0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू।
1: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भ्राणू उनादे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दाला, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
2: जदों घरेलू बिजली दे काम दी गल आउंदी है तां इस नूं खुद ना करो। DIY डोंट डू इट योरसेल्फ। भावें तुसीं इस नूं सिखण लई YouTube ही क्यों ना देखी होवे, भावें तुसीं इह काम कई वार हुंदिया देखिया होवे, भावें तुहाडे इलैक्ट्रीशियन दोस्त ने तुहानूं हिदायतां ही क्यों ना दित्तियां होण, भावें तुसीं किन्ने वी हुनरमंद, चलाक जां आत्मविश्वासी क्यों ना होवो, इह खतरनाक है अते गैर कानूनी भी। इथे कोई गुंजाइश नहीं है। बिजली दा काम DIY डोंट डू इट योरसेल्फ। हमेशा किसे लाइसेंस शुदा इलेक्ट्रीशियन नु फोन करो। energysafe.wic.gov.au ते जाओ। विक्टोरिया सरकार मेलबर्न द्वारा जारी।
3: की होया, इनी टेंशन क्यों लेती हुई है
4: यार? की दसा, मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं बनया।
3: आज सिमी पैन जी आई सी, उन्होंने अपना मॉर्गेज UV फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता।
4: अच्छा, असी भी उन्होंने कांटेक्ट कर दिया फिर ता।
3: जेकर थानू भी लोड है होम लोन, रीफाइनेंस, कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी, ता आज ही कांटेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम UV फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0430-8833-11 और विजिट uvfinancial.com.au। सोना चाहिदा,
5: भरोसा चाहिदा,
3: क्वालिटी ते बाईबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493-536-042।
6: मारे गए, दोबारा देर हो गई। गड्डी चलाउन विच्चों तनाव नूं बाहर कड्डो अते घरों पहला ही तुर पाओ। जे तुसी गति सीमा तों तेज गड्डी चलाउंदे हो तां तुसी कानून नूं तोड़ रहे हो अते तुहानूं महंगा जुर्माना हो सकता है जां अपना लाइसेंस गुआ सकते हो। TSC वल्लों सुनेहा, हर किसे वास्ते सुरक्षित तरीके नाल गड्डी चलाओ।
3: की चाहिदा, ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लाउणा जां वीजे लई मशवरा चाहिदा? मिल जुगा, सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा लई एक भरोसेयोग नाम, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील करदे ने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नूं 0490-054-596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June.
2: ओर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपने आदा एक मजबूत कर हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओर्बिट होम्स अपने 44 वरियां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक अज ही पहुंचो ओर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नो 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते

0: ब्रोकर्स अपनी इंश्योरेंस की हर लोड़ ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555 गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुग निना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दाला ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी ले नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
2: जदों घरेलू बिजली दे काम दी गल आउंदी है तां इस नूं खुद ना करो। DIY डोंट डू इट योरसेल्फ। भावें तुसीं इस नूं सिखण लई YouTube ही क्यों ना देखी होवे, भावें तुसीं इह काम कई वार हुंदिया देख्या होवे, भावें तुहाडे इलैक्ट्रीशियन दोस्त ने तुहानूं हिदायतां ही क्यों ना दित्तियां होण, भावें तुसीं किन्ने वी हुनरमंद चलाक जां आत्मविश्वासी क्यों ना होवो, इह खतरनाक है अते गैर कानूनी वी। इथे कोई गुंजाइश नहीं है। बिजली दा काम DIY डोंट डू इट योरसेल्फ। हमेशा किसे लाइसेंस शुदा इलेक्ट्रीशियन नु फोन करो। energysafe.wic.gov.au ते जाओ। विक्टोरिया सरकार मेलबर्न द्वारा जारी।
3: की होया, एनी टेंशन क्यों लेती हुई है
4: यार? की दसा, मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं बनया।
3: आज सिमी पहन जी आई सी, उन्होंने अपना मॉर्गेज UV फाइनेंशियल सर्विसेज तो ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਿੱਤਾ।
4: ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ।
3: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਨੀ ਅਦਰ ਲੋਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਫਰੋਮ UV ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਟ 0430-8330-11 ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ uvfinancial.com.au।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की होया
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे नहीं
1: काका जी टेंशन छड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तो आड़े नाल
2: ओबिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उना दे सुपने आदा एक मजबूत कर हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओबिट होम्स अपने 44 वरियां ते तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक अज ही पहुंचो ओबिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान 0433-280-252
3: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला दिल नु छू जान वाली अते रूह नु हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला
4: देखो सच बता दो
5: मैं झूठ नहीं बोल रही मैनु सच्ची कुछ नहीं पता
3: स्टारिंग एमी विर्क रूपी गिल अते हिम्मत संधु पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नु तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच
6: वाओ तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है मेनू भी दस दे सीक्रेट
7: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार ना ता इस विच ऑयल ना ही कोई कलर हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है
6: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो विजिट goldleafdairy.com
8: फ्री टेफ नाल अपने शौक नू अपनी नौकरी विच बदलो हॉस्पिटैलिटी तो लेके साइबर सुरक्षा तक बिना किसी ट्यूशन फीस दे 80 तो वध भारी मांग वाली योग्यतावां अते छोटे कोर्सां विचों चुनो उस नौकरी लई हुनर हासिल करो जो तुसी करनी चाहुंदे हो फ्री टेफ सुपने नू हकीकत बनाउंदा है टेफ विक्टोरिया नाल अपने सुपने नू हकीकत बनाओ फ्री टेफ लिख के खोजो
9: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
10: Roz, roz shopping ga hundiyan ne. Pata nahi kehda devta razi kita hai inna ne.
11: Suraj devta.
10: Ki matlab?
11: Oh, kamliye, sun current walyan ton jadda inna ne solar panel lagwaya, ta inna di savings vadh gayi.
10: Mainu nahi pata. Aapa vi solar panel lagwana hai hune.
11: Tusi vi karo bachat, te lagwao solar panel. Call sun current 0448-06-494 te. Sala to best service lai ek hi naam. Sun current. Deo radio hanji da hawala. ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी
12: किचन दा स्टाइल डल लगदा बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया हुन टेंशन खत्म करो आ गया ZJ स्टोन मेसन पार्टी करनु बनाए एकदम क्लासी असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनालिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन
0: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
1: की होया
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल
13: चलदी दा नाम गड्डी आ ते सुनिया ही होना ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनू चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले याद रखो टायर फोर्स जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग मैकेनिकल रिपेयर्स इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स यूनिट 1 19-25 सुमर्टन रोड कैंपलफील्ड कॉल 03908-6655 और विजिट
4: fireforce.com.au।
14: क्या आप जानते हैं कि बच्चों की उम्र 5 साल की होने से पहले उनका दिमाग लगभग 90% विकसित हो जाता है। निशुल्क किंडर 3 और 4 साल के बच्चों को प्राथमिक स्कूल जाना शुरू करने से पहले 2 साल की उपयोगी शिक्षा उपलब्ध करवाता है और परिवारों के पैसों की बचत कराता है। किंडर में बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं, जिससे उनको महत्वपूर्ण सामाजिक, भावात्मक और बौद्धिक कौशल विकसित करने में और अपने दोस्त बनाने में मदद मिलती है। vic.gov.au/kinder पर और अधिक जानकारी प्राप्त
15: करें। कितने बज गई तेरी गड्डी?
16: गड्डी तो ठीक हो जू, पर इंश्योरेंस वालियां नू, लीगल वालियां नू इत्थे प्रदेश विच समझाऊंगा किवें।
15: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंक स्मैश रिपेयर वालियां ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लाई कॉल करो 0383857748 ते। सिंक स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
17: पेंजी की हाल है पिट दर्द दा?
18: जदों दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया, सब कुछ ठीक है। थैंक यू एदे बारे दसन लई।
19: और सुनो, हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेविटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदन लई कांटेक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स। वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 0433465492।
20: ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦਿਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਜਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ TIS ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ 131-450 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ 131-444 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਈ 000 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ।

0: होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लिए बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252।
1: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: जरा हौली

0: जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून।
2: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला, दिल नु छू जान वाली अते रूह नु हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
3: देखो सच बता दो,
4: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
2: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधू। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज़ होवेगी 29 मई नु तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
5: जवाब

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून।
2: जी तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
3: की चाहिदा? ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा? मिल जुगा, सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशन। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।
2: Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road ते तुहानू उड़ीक रहा है। Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest ते सदाबहार Mustang, brand new demo ते quality pre-owned vehicles, trade-in अते finance options भी available। आओ ते अपनी नवी Ford दा test drive करो, business fleet ले गल करो, vehicle experts, Tim Forbes या कोरी नाल, radio हां जी दे हवाले नाल पाओ, 3 साल दी free service। Chadston Ford, ready, set, go!

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June.
2: ऑर्बिट होम्स अपने इरादे वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनिआं दा एक मजबूत घर. हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक. अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 04332852 ते 04332802522 ते.
3: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है. तुसी एथे इंडियन मसाले दालां ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो. पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार. ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 04301231394. दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते. मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच
4: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला. दिल नु छू जान वाली अते रूह नु हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला.
5: देखो सच बता दो.
6: मैं झूठ नहीं बोल रही ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ.
4: ਸਟਾਰਿੰਗ ਐਮੀ ਵਿਰਕ, ਰੂਪੀ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਸੰਧੂ. ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ 29 May ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ.
7: ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਦਿੱਤਾ.

ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस की हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू। जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 4229058 60 और विजिट bansallawyers.com.au।

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून।
2: किचन द स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया जी जे स्टोन मेसन, पार्टी करनो बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410 045 555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की होया
0: अथे इमिग्रेशन दे एने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छड़ो फोन चको कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
0: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 90779733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल

0: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला दिल नु छू जान वाली अते रूह नु हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला
1: देखो सच बता दो
2: मैं झूठ नहीं बोल रही मैनू सच्ची कुछ नहीं पता
0: स्टारिंग एमी विर्क रूपी गिल अते हिम्मत संधु पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नु तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच
3: सोना चाहिदा
4: भरोसा चाहिदा
3: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे बाई कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत कैश चाहिदा गोल्ड लोन इजी एंड सेफ रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक कॉल 0493-536-042
5: रोज रोज शॉपिंग हुंदियां ने पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्होंने
6: सूरज देवता
5: की मतलब
6: ओ कमलिए सन करंट वालियां तो ज्यादा इन्हां ने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई
5: मैनू नहीं पता आपा भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे
6: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल कॉल सन करंट 0448-066-494 ते सालां तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम सन करंट देओ रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी
3: रेडी सेट गो चेस्टन फोर्ड डेंडिनोंग रोड ते तुहानू उड़ीक रहा है फोर्ड रेंजर रेंजर सुपर ड्यूटी एवरेस्ट ते सदाबहार मस्टैंग ब्रांड न्यू डेमो ते क्वालिटी प्री ओन्ड व्हीकल्स ट्रेड इन अते फाइनेंस ऑप्शंस वी अवेलेबल आओ ते अपनी नवी फोर्ड दा टेस्ट ड्राइव करो बिजनेस प्लेट लाई गल करो व्हीकल एक्सपर्ट्स टिम फोर्ब्स या कोरी नाल रेडियो हांजी दे हवाले नाल पाओ 3 साल दी फ्री सर्विस चेस्टन फोर्ड रेडी सेट फोर्ड
7: की होया इनी टेंशन क्यों लेती हुई है
8: यार की दसा मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं बनया
7: आज सिमी पैन जी आए सी उन्होंने अपना मॉर्गेज यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता
8: अच्छा असि भी उन्होंने कांटेक्ट कर दें फिर ता
7: जेकर थानू भी लोड है होम लोन रीफाइनेंस कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी ता आज ही कांटेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0433-8311 और विजिट uvfinancial.com.au
9: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
10: जुगाड़ नहीं ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एएटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
9: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा
10: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au
7: किचन दा स्टाइल डल लगदा बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया हुन टेंशन खत्म करो आ गया जीजे स्टोन मेसन पार्टी करनो बनाए एकदम क्लासी असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन
11: चलदी दा नाम गड्डी आते सुनिया ही होना ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनु चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले याद रखो टायर फोर्स जिना को लॉग बुक सर्विसिंग मैकेनिकल रिपेयर्स इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स Unit 1, 19-25 Somerton Road, Campbellfield. Call 03908-6655 or visit tireforce.com.au.
7: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं, डॉक्टर कोल जाने हो. फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, delay in law is damage in life. फैमिली इशू प्रॉपर्टी दा मसला कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर इको नाम जो कम तुहाडे लई कर देने बंसल लॉयर्स तुहाडा भरोसा साडा तजर्बा ते जित अपनी कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au
9: Penji ki haal hai pith dard da
12: jadon da sleep and relax da indian style room wala gadda khareedya sab kuch theek hai
1: थैंक यू ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ।
4: ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਸਲੀਪ ਐਂਡ ਰਿਲੈਕਸ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈੱਡ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਲੀਪ ਐਂਡ ਰਿਲੈਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਲੈਵਟਨ ਨਾਰਥ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਵਾਂ ਸਟੋਰ ਓਹਨਸ ਰੋਡ ਐਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਮਨਪਸੰਦ ਗੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਬੈੱਡ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸਲੀਪ ਐਂਡ ਰਿਲੈਕਸ। ਵੇਕ ਅਪ ਫੀਲਿੰਗ ਟੋਟਲੀ ਰੈਸਟਡ। ਸਰਚ ਅਸ ਆਨਲਾਈਨ ਔਰ ਕਾਲ 0433465492।
12: ਵਾਓ, ਤੇਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅਤੇ ਟੇਸਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ।
13: ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੈ ਗੋਲਡ ਲੀਫ ਡੇਰੀ ਦੇ ਪਿਓਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਘੀ ਦਾ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਰੇਂਜ ਗ੍ਰਾਸ ਫੈਡ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਤਿਆਰ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਇਲ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਲਰ, ਹਾਰਮੋਨਸ ਜਾਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗਲਾਸ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਪੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
12: ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਬਾਏ ਕਰੋ ਗੋਲਡ ਲੀਫ ਦਾ ਪਿਓਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਘੀ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਤੋਂ। ਵਿਜ਼ਿਟ goldleafdairy.com।
7: ਓਪਿਟ ਹੋਮਸ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰ। ਹਾਊਸ ਐਂਡ ਲੈਂਡ ਐਕਸਪਰਟਸ ਓਪਿਟ ਹੋਮਸ ਆਪਣੇ 44 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 100% ਫਿਕਸਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗਾਰੰਟੀ ਵਿਦ ਇਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੀਡਿੰਗ 24-month ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੌਕ। ਅੱਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋ ਓਪਿਟ ਹੋਮਸ ਡਿਸਪਲੇ ਸੈਂਟਰਸ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਹਰਪਨ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ 0433-280-252 ਤੇ। 0433-280-252 ਤੇ।

0: जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून।
2: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ।

0: Hey kids, आजो चुट क्लास ना जाओ ये बच्चे आ चुके ने जिन्हों की कॉल कटी गई उन्होंने को मैं माफी चाहना फिर दोबारा तो तुम ला सकते हो जी कोई मेरे वालों कोई प्रॉब्लम जो मैं कुछ कह नहीं सकता मैं तो आराम ना कहानी पढ़ रहा है मेरा तो कोई कसूर नहीं अपने आप ही कुछ होया
1: कुछ तो
0: हाँ जी ते नहीं आ ही गए सारे वापस ते बाकी जेडे रह गए ने उन्होंने अगर बेनती है कि जिदा जिदा वेलियां हो गया लाइना फिर तुम हूँ करो कॉल तो मन्नत फतेह मैं आई डोंट नो क्यों ताड़ी कॉल नहीं लग रही बाकी तो सारे दियाँ लगियां ने पुत्तु तुम डिफरेंट फोन तो ट्राई कर लो हो सकता थोड़े आले पासों अज नुक्स होवे कोई तो आप अगे तो सुनते चुटकले तो मेरे नाल अज प्रोग्राम दे विच ने कृष्णा भारद्वाज ब्राह्मणा दे विच सब तो उच्च श्रेणी
1: जी जी
0: भारद्वाज मेरी नॉलेज च इन्ना का आ गया मैनू रिसेंटली कोई दस के गया है
1: अच्छा क्या बात है कहिंदे कि आह मेन सब तो मशहूर कहानी है भारद्वाज ऋषि तो रिलेटेड कि उन्होंने दक्षिणा दे अंदर लंका ही मांग लेती सी उन्होंने ग्रह प्रवेश की पूजा कराई शिव पार्वती तो शिव जी ने कहा मांगो वत्स क्या मांग तो बहुत वधिया कहिंदे लंका मैनू ही दे दो फिर शिव जी ने कहा गोपार्वती माता नूं कि मैं तुहानूं कहिंदा सी ना कि असी कैलाश जोगे हां असी कैलाश च ही रहना कोई ना कोई अड़चन आ जानी है फिर क्योंकि कहा सीगा
0: मंगला जो मंगना है
1: बच के रो
0: चीजा सानू ध्यान च रखनिया पैंदियां ते आओ आपां वधदे हां लाफ्टर थेरेपी दे विच ते साडे नाल सब तो पहला श्रेया सत श्री अकाल श्रेया अज तुसी सब तो पहला जे श्रेया वीरा तुसी आउने रहो की हाल चाल है तुहाडा खराब ठंड दे नाल वैसे मैं ठीक हां मैं खुरच खुरच खुरच खुरच कर देनी हां
1: सारा टेबल
0: कर लेंदे हो
2: कट करो
0: ओके तुहाडे नेल्स ठीक है नेल्स कट कीते
2: हां जी
0: ओके
1: स्कूल जांदे ना करने
0: साडे ते पास जांदे चेक कर लेंदे हुंदे साडे
2: चाह पी के
0: आए हां जी चाह पी ली भाजी
1: चाह चू पी ले
0: हां जी चाह पी ली वीर जी चाह चू चाह चू दे नाल अहीं पिन्नी खाया
1: हां पिन्नी शिन्नी खा ली चाह चू नाल
0: हां जी जो तुहाडा हुक्म हुंदा पा एक दो दो ही गया अपन वन वन खादी
1: वन वन ईच हो गया
2: गुड
1: थैंक यू सो मच
0: तू ही की खादा
2: बूटी केक
0: हैं
1: कुकी
0: केड़ा केक
1: कुकी
2: बूटी केक
0: न्यूट्रीगेन
1: अच्छा न्यूट्रीगेन
0: ओके तू ही मी पिनी पुनी खाया करो
2: खाए बदाम
1: Very good.
0: वो सारे ही आ गए हैं।
2: Bye
0: bye मानो बिल्ली। ते श्रेया किथे आ?
2: दीदी ना गल करो।
0: हाँ जी लिया ओले ओले। दीदी सास्त्रीकाल।
2: अंकल।
0: सास्त्रीकाल। की हाल है?
2: ठीक है।
0: ठंड लग दिया?
2: नहीं।
0: Very good।
2: आज पजामा दे आ।
0: ओए आज पजामा डे आ ओके मेनू लगा आज थर्सडे आ
1: वीरा गलत सुना गया है डे ऑफ द वीक फिर
0: पजामा
2: डे ਪਜਾਮਾ ਦੇ
0: ਇਹ ਕਾਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ?
1: ਬਿਗ ਗਰਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਬਿਗ ਗਰਲਸ ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ।
2: ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਪਜਾਮਾ ਡੇ ਹੁੰਦਾ।
0: ਅੱਛਾ, ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਜਾਮਾ ਡੇ। ਓਕੇ,
2: ਕੱਲ ਛੁੱਟੀ ਹੈ।
0: ਅੱਛਾ, ਕੱਲ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ?
1: ਓਕੇ, ਵਾਹ ਬਈ।
0: ਕੱਲ ਫਿਰ ਚੁਟਕਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉੱਠ ਪੋਗੇ?
2: ਉੱਠ ਗਏ।
0: ਓਕੇ, ਜਿੱਦਣ ਨੈਕਸਟ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਉਦਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਰੰਟ ਦਿਖਦਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਚ,
1: ਹਨਾ? ਸਹੀ ਗੱਲ।
0: ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੱਸ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਸੁਣਾਓਗੇ ਪੁੱਤੋ? ਹੈਲੋ, ਕਿ ਪਜਾਮਾ ਹੀ ਦੱਸਣਾ
1: ਬਸ?
0: ਹਾਂਜੀ,
2: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December.
3: Amazing. Din din da da din da da din da da din da da din da da din da da din da da.
1: Kya?
0: ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਅਲਤਾਫ ਰਜ਼ਾ,
1: ਖਿਆਲ ਨੀ ਆ
0: ਰਿਹਾ। ਖੂਨ ਜੂਨ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਉਹ ਬਾਤ।
1: ਅਰੇ
0: ਵੋ ਸਾਲ ਔਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਲ ਔਰ ਹੈ, ਸਮਥਿੰਗ ਸਮਥਿੰਗ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਅੱਜ ਅੱਜ ਸੁਣਾਂਗੇ ਗਾਣਾ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਜ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਰ ਹੋ।
4: ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਐਂਡ ਵੰਸ਼ੋਤ ਅੰਕਲ ਜੀ।
0: ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ?
4: ਵਧੀਆ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ?
0: ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਕੀ ਲਿਆ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਅੱਜ? ਬੁਜਾਰਤ, ਓਕੇ ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ।
4: ਚਲਦਾ ਚਲਦਾ ਰੁੱਕ ਗਿਆ, ਨਈ ਛੁਰੀ ਵੱਧਦੀ ਗਰਦਨ, ਫਿਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ।
0: ਹਾਂਜੀ,
1: ਚਲਦਾ ਚਲਦਾ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਨਈ ਛੁਰੀ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ।
0: ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਝਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ?
1: ਇਹ ਬੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਹੈ ਨਾ?
0: ਹਾਂ, ਫੇਰ ਦੱਸੋ, ਫੇਰ
1: ਡਬਲ ਲੇਅਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹ।
4: ਚਲਦਾ ਚਲਦਾ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਲਾਈ ਛੁਰੀ ਵੱਧੀ ਗਰਦਨ, ਫਿਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ।
0: ਅੱਛਾ, ਛੁਰੀ, ਅੱਛਾ ਗਰਦਨ ਵੱਡੀ ਫੇਰ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਟਰਾਜ ਪੈਨਸਲ ਜਾਪਦੀ ਮੈਨੂੰ।
1: ਓ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ,
0: ਹੈ ਨਾ?
1: ਸਹੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ।
0: ਇਹ ਤੇ
1: ਬਾਤ ਹੈ,
0: ਐਡ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੇ ਆ ਗਈ ਪੈਨਸਲ ਮੈਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ,
1: ਥੈਂਕ ਯੂ,
0: ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰਬਾਜ। ਹਾਂਜੀ, ਐਂਬਰ ਨਾ ਕਰਾ ਦੋ।
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣਾ, ਇੰਨੀ

0: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दालां ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394 दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
1: आ किथे वज गई तेरी गड्डी?
2: गड्डी ता ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वालियां नू लीगल वालियां नू एथे प्रदेश विच समझाऊंगा किवें।
1: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंक स्मैश रिपेयर वालियां ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383-85-77-48 ते। सिंक स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
3: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नू छू जान वाली अते रूह नू हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
4: देखो सच बता दो।
5: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
3: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधू। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नू तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
0: होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उना दे सुपनेयां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते। 04332802522 ते।

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून।
2: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुग निना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दालां ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम वी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुग निना विच।
3: किचन दा स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया। हुन टेंशन खत्म करो, आ गया जी जे स्टोन मेसन। तुहाडे घर नू बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 Collins Road, Milton।
4: बलजीत ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਜੁਲਰੀ ਵੇਖਣ ਤੁਨਾ ਜੁਲਰਸ ਚਲੀਏ
5: ਯਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਂਡੀ ਨੋਗ ਵਾਲਾ ਸਟੋਰ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ।
4: ਓ ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਡੈਂਡੀ ਨੋਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਸੈਂਟ ਐਲਬਨਸ ਵਿੱਚ ਤੁਨਾ ਜੁਲਰਸ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਭਰੋਸਾ ਤੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਰੈਡੀਮੇਡ ਗੋਲਡ, ਡਾਇਮੰਡ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਜੁਲਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਜੁਲਰੀ ਵੀ। ਤੁਨਾ ਜੁਲਰਸ 99 Main Road ਵੈਸਟ, ਸੈਂਟ ਐਲਬਨਸ ਅਤੇ 341 Lonsdale Street, ਡੈਂਡੀ ਨੋਗ। ਫੋਰ ਮੋਰ ਇਨਫੋ ਕਾਲ 0499-2535-45 ਤੇ।
6: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
7: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार। ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
6: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
8: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: किचन दा स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया जी जे स्टोन मेसन, पार्टी घर नु बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
3: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au। रेडी सेट गो चेस्टन फोर्ड, डेंटिनोंग रोड ते तुहानू उडीक रहा है फोर्ड रेंजर, रेंजर सुपर ड्यूटी, एवरेस्ट ते सदाबहार मस्टैंग, ब्रांड न्यू डेमो ते क्वालिटी प्री ओन्ड व्हीकल्स, ट्रेड इन अते फाइनेंस ऑप्शंस वी अवेलेबल। आओ ते अपनी नवी फोर्ड दा टेस्ट ड्राइव करो, बिजनेस फ्लीट लाई गल करो व्हीकल एक्सपर्ट्स टिम फोर्ब्स या कोरी नाल। रेडियो हांजी दे हवाले नाल पाओ 3 साल दी फ्री सर्विस। चेस्टन फोर्ड, रेडी सेट फोर्ड।
4: यार तू इत्थे इन्नी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
5: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
4: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
5: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
6: कि तुसी अपने घर दे उपकरणां नू बिजली नाल चलाउण बारे सोच रहे हो, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਈਜ਼ੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ SEC ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਤਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣ, ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਟ੍ਰੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਭਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ $2,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਈਜ਼ੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ SEC.com.au ਤੇ ਜਾਓ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ SEC ਦੇ ਨਾਲ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਮੈਲਬਰਨ ਵੱਲੋਂ
7: ਚਾਹ Homes, अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लिए बनाउंदे ने उना दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स Orbit Homes अपने 44 वर्यां दे तजुर्बे नाल थानु दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो Orbit Homes डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252।

देर हो जान तो जदों तेरे भाई ने मैनू मारिया सी। उस दिन पहलो ही मेरे पेट विच बहुत दर्द हो रहा सी। उस दिन पता नहीं मेरे दिल विच की आई ते मैं तेरे सिवे ते जाके बड़ा ही रोई। उस दिन तेरी मां नूं भी पता नहीं क्यों तरस आ गया ते वो आप भी बड़ा रोई। ते उसने तेरे भाई नूं भी चिड़किया क्या निज होणिया गऊ ते तीवी दा की मारना होया जिन्हें अगों हाथी नहीं चुकना। देखता किवें पुतली वर्गी बहू नूं तू रोल छड़िया है किते तेरे कसाई दे वस पै गई। वह चुंदा रहिंदा तां उहने कदी इहनूं पंग भी नहीं लगनी देनी सी। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਡ ਹੋ ਜੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੀ ਨਿਕਰਮਣ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਦਾ ਏ ਵੀ ਚੰਦਰਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਏ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਨਿਦਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ते उस दिन तेरा भरा भी रो पिया ते मेरा रोना भी उदन ठल्ले ही ना। तेरी मां ने मुड़ सिवे ते जानो मैनू रोकिया ते समझाया धीए मरे किसे दे मित नहीं हुंदे, सिव्या विच की पिया है। ओ ता सगों साडा वैरी सी जो किसे पिछले जन्म दा वैर लैके तुर गया। कि सच कहिंदी सी तेरी मां कि तू सचमुच मेरा वैरी सै, कि तेनू मैं कदी याद नहीं आंदी, कि सचमुच तू मैनू भुल गया है। हां याद रखन दा भला फायदा भी की है, जिंदगी दे किसे मोड़ ते असी अचानक मिले सां ते उसे मोड़ ते असी अचानक विछड़ गए सां। फिर मैं सोचदी हाँ नाल तुरदे साथी नूं भुल के विछड़े राहे लई भटकना भला किधर दी सियाणा पे। पर फिर भी पता नहीं क्यों तेरियां गल्लां करनियां तेरे बाबत सोचना मैनू चंगा चंगा लगता है ते हर वेले दिल करदा रहिंदा है कि कोई तेरे कोलों आके दसे सम्मी तू उसनू याद ए। ओ कहिंदा सी की कहिंदा सै तू, ए मैं नहीं सुनना चाहुंदी, शायद तू कहिंदा होवेगा मैं इत्थे सुखी हाँ, सम्मी नू कहीं बेवकूफ ना बने मैनू भुल के सुखी रहे। नहीं नहीं बस मैं ए नहीं सुनना चाहुंदी, मेथों बगैर तू सुखी है। मैं ता बस यही सुनना चाहुंदी हाँ कि कोई आके दसे सम्मी ओ तेनू बहुत याद करता है, जदों तेरा भाई मैनू मारदा है ना कि तू तड़फ नहीं उठदा, कि तेरा दिल नहीं करदा कि तू मैनू बचा लई, मेरिया सट्टां नू पलोस पलोस के सारी पीड़ हटा देवी, मेरिया अखां विच तक के सारा गम भुला देवी। फिर सोचदी हां शायद तू ही मैनू इहो ही कुटिया करदा, औरत नू कुटना आदमी लई मामूली गल है ना, मेरा बाप भी मेरी मां नू एवें ही मारदा हुंदा सी ते मेरियां उदों डाढ़ा निकल जांदियां सन, शायद मेरी मां दी मां नू भी इहो ही कुट पैंदी होवे। मैं बथेरा सोचदी हां कि तैनू ना याद करां पर तू मैनू भुलदा ही नहीं, दिल हर वेले पुछया बुझया रहिंदा है। तेरी मां ने बथेरी वारी आखना कुड़े बहु जेड़ी होगी हुण होगी, हुण तां मेरे पुत दे शगन मनाया कर ते रंगदार लीड़े पाया कर, पर मेरी तां कदे वड्डी रूह नहीं करदी। एक दिन दी गल है, खबर नहीं मेरे दिल विच की आई कि मेरा प्याजी सूट पाउण नूं जी कीता, शायद इस करके कि जदों तू पहली वारी साडे पिंड आया सैं तां तेरे प्याजी साफा बन्निया होया सी।
मैं डरदी डरदी ने तेरे भाई नू प्याजी सूट लिया के देन ले गया, पर उह झिड़क के बोलिया, पैसे तेरे प्यो कोलों आउणगे। जिद्दण दा जीत मरिया है, इत्थे मामला भरन दा फिकर पिया रहिंदा है, ते तैनूं सूटां दी पई होई है। तीमियां नूं तां बस टूमा कपड़ियां तों बिना ते कोई होर गल ही नहीं हैगी। तुसी सारे आदमी क्यों इहो जिहे हुंदे हो? मेरा बाप भी मेरी मां नूं इहो ही क्या करदा सी, ते शायद मेरी मां दा बाप भी इहो ही कहिंदा होवे, पता नहीं। फिर भी मैनू क्यों लग्या कि जे तू जिंदा हुंदा भावे किन्ना ही गरीब क्यों ना हुंदा, तू शहर जांदिया जरूर मैथों पुछया करना सी, सम्मी दस तेरे लिए की लियावां। पर खबरे तू भी अपने भाई वर गई हुंदा, भावे उस शगना भरी रात विच खड़ा तेरा धुंदला आकार भैड़ा मैनू कदे नहीं लगता। सच तेनू दसा, थोड़े दिन होए मैं निक्की दे व्याह ते ओही अपने व्याह वाला सूट पाया सी, सवार के वाल वाहे, ते जदों मैं अपना मुंह शीशे विच देखिया तां इक सरूर जिहा आ गया। मेरा दिल कीता कि कितरों तू आ जावे ते अज देखे कि मैं किड्डी सोहणी आ, ते तू जरूर जरूर। पर की पता है, तू ही तां उसे भरा दा सैं जिहड़ा कहिंदा सी एवें नहीं बण थण के लोकां दीआं नज़रां विच चढ़ीदा। फिर भी मैनू तू बहुत याद आया, किड्डी बेवकूफा ना मैं। ठीक आ, ठीक ही तां कहिंदी सी तेरी मां कि तू तां मेरा कोई पिछले जन्म दा वैरी सी जिहड़ा सारी उम्र दा झोरा ला के किधरे तुर गया है। खबरे उत्थे तू सुखी वस रहा होए, खबरे तू कौन सै, किहो जिहा सै, खबरे तू किधर चला गया है। बस यही मैनू पता है कि तू कदे नहीं आना, तेरे बोल मैं कदे नहीं सुननी, पर फिर भी मैं तेनू उड़ीकदी रहनी हाँ, भालदी रहनी हाँ। तेरे विच्चों मैं किसे खुशी दी रेखा उगड़ दी तक्की सी, जिंदगी दा कोई गीत खूंजदा सुनिया सी, ते अज दियां चोपां भरी जिंदगी तो दूर नस जाण लई मैं तेरा साथ भालदी हाँ। पर नहीं, जे मैं बहुत सुखी भी हुंदी तू तां मैनू फिर भी याद आया करना सी, क्योंकि एक रात मैं तैनू किवें दसा कि तेरे नाल मेरी इको रात की सांझ ने मेरिया सब रातां वीरान कर दित्तियां ने, ते अज भी जदों मैनू याद नहीं कि तू किहो जिहा सै, तेरे नक्श किहो जिहे सन, ते ए भी याद नहीं कि उस रात तू मैनू की आख्या सी, तू मैनू किवें बुलाया सी। तू मैनू याद है, ते मैनू याद है ओ रात। काड़ करके वज्जी चपेड़ ने सम्मी नू चुकन्नी कर दिता। उसने देखिया कि सूरज ढल के आथण ते आथण तो मुड़ रात हो गई है, चुल्ले ते पई दाल सड़ चुकी सी, चौण्यों आई गऊ वच्छे नू चुंगा के सन्नी खाण जा लगी सी, आटे वाली परात कुत्तियां ने चट चट के साफ कर दिती सी, पर ओ अपने मर चुके पति दा सोनी महीवाल दा किस्सा हाथ च फड़ी उंदी पई पता नहीं कदों दी बैठी सोची जा रही सी। ए साली सारा दिन अखां सुजाई रख दिए, कोई आमदा हो इनू पिछला याद, निकल जा मेरे घरों। डिडरिया वांग झाक दी सम्मी नू दो चार धक्के धौले मार के उसदे हुण वाले पति ने बूहों बार कढ के पार अड़ा लिया। ओ भी एक रात सी, ते ए भी एक रात सी, बंद बूहे अगे गोडियां विच सिर दई रोंदी सम्मी ने सोचिया।

0: क्या बात है, शाहूकार से ब्याह करवा ले। किसी रेंज रोवर से शादी करवा ले, मैं कैमरी वाला हूँ। तो आज ही मिला, किस्ते मिला गाड़ी बेचने दे भाई, गाड़ी मिलेगी आसान किस्तों पे, कैमरी छोड़ो जो मर्जी ले लो भाई साहब।
1: भाई ऐसे ही हम प्रमोशन भी कर लेते हैं,
0: प्रमोशन कर,
1: गाड़ी हमारे पास है नहीं कोई भी, बस प्रमोशन ही कर रहे।
2: वेरी गुड वेरी गुड। जतेंद्र पाल सिंह जी कहते हैं, राम राम तूर साहब एंड कृष्णा जी, मॉर्निंग प्रोग्राम वाज ग्रेट एंड कीप अप द सेम इज गो ग्रेट। योलो योलो योलो हुई पई है भाई, योलो योलो
0: हाले कर
2: हुई पई है। ते अपना कवलजीत जी कहते हैं, सत श्री अकाल शो ऑलवेज गुड। हाँ जी हाँ जी, इतने बलकीरत भाजी आ जाने फिर साडे नाल शो करने लिए वड्डे लोग।
0: ओह माय गॉश,
2: फिर तो जी
0: आज तो बड़े अलग से मूड में फिर है बनी भाई सर।
2: एक गाना जेड़ा आपा सुनया तू साहब, जे डाइसेक्ट करना होवे थानू की इहदे चो समझ आया, कोई एक अद्धी कोई लाइन जो सानू समझा सको कि यार आ बड़ी हाई लेवल पोएट्री सी या नथिंग?
0: बहुत सारी चीजें भाई साहब, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आप अगर आपको उस भाषा का थोड़ा सा भी ज्ञान है तो आपको तो बहुत बढ़िया लगेगा, अदरवाइज म्यूजिक का एंजॉय करो और जो बोल रहे वोकैबुलरी उसका एंजॉय करो आप। जिसको समझ आ रही है उसके लिए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जो बोल रहा है उसमें एंजॉय करो। अरे भाई साहब साउथ अफ्रीका तर पंजाबी गाने में नाच रहे हैं, उन्होंने बस बीट देखा हुआ कौन सी चल रही है।
3: मेन तो एंजॉयमेंट ही है ना,
0: ये हरियाणा की जो मेन रागनी है वो भी सुना करो, उसमें भी बहुत मतलब टिपिकली जो लोग गीत बोलना करा उसने,
2: टप्पे कह लेना जितना
0: टप्पे कह लो, लोग गीत कह लो उसके, बहुत बढ़िया हुआ तो भी सुनने वाले मजा आ जाए।
3: सुनेंगे कभी फ्री टाइम में,
0: जब मर्जी सुन ले भाई साहब, जब किस्त ना उतरे ना सुन ली।
2: जी सारे
3: जब किस्त हट जाएगी ना तब सुन
0: सुनेंगे।
2: यार साउथ इंडियन म्यूजिक भी बड़ा मजेदार होता वैसे,
0: हाई
2: साउथ इंडियन म्यूजिक कोई बहुत मजेदार होता, कभी गाना सुनो ना जेड़ा हुन इना दे चीफ मिनिस्टर बने ने तमिलनाडु दे बने ना
0: विजय
2: विजय, उन्हां दा गाना वाठी कमिंग
0: वाठी कमिंग
2: वाठी कमिंग, ओहो क्या मतलब बीट आउदी समझदा
0: उसमें क्या उसकी शब्द बोल कैसे हैं
2: या बोल पता ही नहीं, बस म्यूजिक है क्योंकि उन्हां दी भी ढोल दी बीट बड़ी पिक्यूलर जी है, यूनिक जी है।
0: जिस तरह इसका गाना आया था ना सिंगा का, उसने वहां जाकर शूट कराया था साउथ इंडिया में, बेस लेकर उसका सबसे पहला गाना आया था सिंगा का,
2: सिंगा
0: उसने साउथ इंडियन बीट ली थी सारी, उसका पहला गाना वही उसकी बीट में था।
2: ओके
3: मुलादा वही सब तो ज्यादा मशहूर ही है,
0: जिसमें वो डॉन
3: उसके बाद थे, फिर ओके रिपोर्टी
0: उसके बाद तो भाई किस्ता बढ़ गई होगी, अंदर उधर बिजी हो गया।
3: पंजाबी में बोलते हैं ना तप्पड़ रोलना,
2: इतने प्यार ना आज तक कभी किसी ने तप्पड़ रोलना नहीं किया, तप्पड़ रोलना गाइस। तो फिर भाई तुसी भी सानू जेड़े सुन रहे हो भी दसो भाई कि तंग कीता भाई थानू किश्ता ने भी बहुत ज्यादा, तो जे एदा की जे एदा पार भी की है ना, कि एक आपां भी करता कि आपां अपनी लाइफ नू कमोडिटाइज भी बहुत करता कि आपां अपनी लोड दीआं चीज़ां नू बहुत ज्यादा है ना, ज्यादा लोड दीआं चीज़ां हो गईआं होईआं अपने साडे लई
3: लेकिन वो लाया अभी अभी शुरू किया
2: है,
3: राज बनेगा अभी,
0: किस तरह बोल रहे हैं बहनो भाइयो, आज आपके गांव में लगी है जेमिनीज सर्कस।
2: देखिए आजकल एक म्यूजिशियन बड़ा मशहूर है ना, प्रिंस प्रिंस प्रिंस,
0: हमारे टाइम तो
3: प्रिंस डीजे थे सुने,
0: सम्राट शंकर।
2: हाँ मैं भी देखा
0: सम्राट शंकर, बड़ा पूरा थिएटर बुक हुआ कर था भाई, गांव के गांव देखने जमा कर दे शंकर सम्राट का।
2: ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਾਦੂਗਰ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੋਅ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੋਈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ
3: ਆਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ
2: ਆਪਣੇ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਨਾ ਅਨਮੋਲ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣਾ।
3: ਹਾਂਜੀ ਉਹ
2: ਮੈਂਟਲਿਸਟ ਹੈ, ਪੜ ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਪੜ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸ ਕੋਡ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ,
3: ਉਹਨੇ ਦੇ ਔਜਲੇ ਬਣਾ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
2: ਹਾਂ ਹਾਂ
3: ਮਤਲਬ ਨਾਈਸ, ਵਾਹਵਾ ਚੱਲਣ ਦਿਆ।
0: ਯੋ ਬਤਾ ਸਕਾ ਵੀ ਯੋ ਕਿਸ਼ਤ ਉਤਰਾਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਤਰਾਗੀ,
2: ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਚਾਰੇ
3: ਕੋਈ ਬੰਨੀ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਫਸਾਊਗਾ
0: ਕਿਸ਼ਤ ਮੇਂ ਬਾਤ ਹੋਈ।
2: ਹਾਂ

0: किस्त वाली जो चीज है ना भाई साहब, यह खूबसूरत भी है और बसूरत भी है।
1: प्लीज एक्सप्लेन।
0: खूबसूरत इस करके है अभी, और आप खुद देखो भी, जो चीज आपको लगा भी यार, मान लिया आपने 10 लाख की गाड़ी लेनी है और आप 10 लाख पहले आप पैदा करोगे, कमाओगे, कहीं कुछ बनेगा, फिर आप जाके गाड़ी लोगे, लेकिन आपने अपना सपना जीना है
1: जी।
0: और आपके पास इनकम ठीक चल रही है, तो किस्ता एक ऐसी चीज है भाई, आपको वो चीज मिल जाएगी और आप आराम से उसको मैनेज करो। लेकिन उस मैनेज के चक्कर में ना, एक चीज ले ली, फिर दो ले ली, तीन ले ली, हमारे पैर बड़े हो जाए, चादर छोटी रह जाए।
1: कहते हैं डेट ट्रैप के अंदर बंदा आ जाता है ना।
0: अगर ये भी एक बैलेंस है, यहाँ बैलेंस बनाना आ गया ना, फिर तो किस्त वर्गी चीज कोई नहीं भाई, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। अगर बैलेंस कहीं पैर बड़े हो गए, चादर छोटी, पर किसी की चादर मिलनी भी नहीं,
2: तो मतलब प्री प्लान जरूरी है दे विच पहला।
1: मतलब आई रिमेंबर, सॉरी टू कट यू गाइस ऑफ, मैंने याद है जब मैं इंडिया हुंदा ही ते क्रेडिट कार्ड पहली बारी जो लिता है ना, ते उस मेरे अकाउंटेंट ने दस्या सीगा, क्योंकि असी थोड़े सीगे ऑर्थोडॉक्स जे, सन मेरे फादर नु तो बिल्कुल ही नहीं शौक से है कि इधर ही चीज गल पानी नहीं, आपा नवी पनीरी उठी था ना कि लेने, तो उन्हें एक शिक्षा देते सी कि कृष्णा खर्चा कर रहे तो 25%, जे लाख का तो 25,000, जे 50,000 का 12,500 की क्रेडिबिलिटी भी वधदी है। वो अल्टीमेटली होया ही, वो 3 साल दे अंदर, मतलब मेनू जेड़ा जिस बैंक ने 50,000 का इशू किया ही, ओही मेनू बाद चो 5 लाख का भी उन्होंने इशू करता, पर क्यों, क्योंकि मैं वो चीज ही करता रहा। पर फिर वो डिसिप्लिन किन्ना औखा, कि ए जानना कि यार 50 कह ते रहा पर मैं 12,000 ही करना,
2: नहीं ते औखा काम है, क्योंकि जो सामने देखदा होवे फिर बदोबदी बंदा वध करता।
1: ते हुण मैं सोचदा शायद थोड़ी ज्यादा छोटी उम्र सी, कि आई वॉज क्वाइट यंग उस हिसाब नाल, ते बंदा शायद किसी वड्डे दी कई गल मननी शुरू करदा, हुण थोड़े ज्यादा अडल्ट जे होए आ, शायद अज मेरे कोलो 50,000 दा कार्ड हुंदा ते मैं हाथ शायद ना रोक पांदा, मैं 40-45, फिर कई बारी बंदा कहिंदा ना कि किश्त थोड़ी किश्त करा लो, पहले तो इंडिया च तो किश्त नहीं हुंदी है ना, थोनू कहना पैंदा कि किश्त कर दो क्रेडिट कार्ड दी, फिर हौली हौली बंदा डेट ट्रैप च डिगदा जांदा है।
2: कृष्णा जी तूत साहब, जिहड़ी कृष्णा जी ने गल नहीं कीती, इत्थे थोड़े दिन पहला किसे लोन वाले वीर भरा नाल बैठा हाँ, ते ओह मैनूं कहिंदा हैगा कि तेरे को क्रेडिट कार्ड हैगा, मैं नहीं हैगा, ते कहिंदा फिर तेरा लोन होना औखा थोड़ा जिहा, मैं भी भरावा पहली बारी सुनिया भी मेरे ते नहीं कुछ हैगा, ते मैनूं ते सगों इह होऊगा कि मेरा सौखा होना वा, ते तुसीं आखण डे होना नहीं, ओह कहिंदा तेरी क्रेडिट स्कोर ही नहीं आउणी क्योंकि तूं कदी कर्जा लै के पे ही नहीं कीता। ये भी बड़ा जरूरी जे थोड़ा जिहा कर्जा लै के टाइम सिर
0: देना, वो आपकी कैपेसिटी देखा भाई, वो कर्जा लेके वापस भी कर सकता है नहीं कर सकता
1: है। ये अंदर एक हो रहा था कि इज देयर एनीथिंग, खासकर थोड़े नाल सवाल है मेरा तूर साहब, कि कोई कोई इधर ही चीज दसो यू रिग्रेट बाइंग, कि मैं भी यार उदो ले लेती, लोड़ सी नहीं, भावे वह किश्त भी किश्त का हिस्सा ना बनी हो, पर एटलीस्ट थोड़ा पैसा तो लगा ना, वो किसी होर पासे लग सकता सी।
0: कार दी भाई साहब।
1: अच्छा,
0: कार मैंने कुछ पैसे पास पड़े थे, कुछ क्रेडिट कार्ड पे मैं लगा भी यार कार लेने थोड़ी सी बड़ी है ना,
2: कुछ क्लेम करने थे,
0: कुछ भी था। क्लेम वाला काम तो बाद में शुरू हुआ था, तो उससे पहले की बात है। कार एक ऐसा डिसीजन था, मैंने लगा भी यार क्रेडिट कार्ड पर लेनी नहीं चाहिए थी, या तो उतना खर्चो अगर आपको लगता है आपकी इनकम भाई अच्छी खासी आ रही है, कम से कम भर दोगे उसको, और इनकम तो आपकी मान ले 100 रुपए है, खर्चा कर दिया 1,000 का, तो उसको भरने में फिर टाइम लगेगा, तो नहीं काम चल सका था, अभी जरूरत नहीं थी उस चीज की, तो ऐसा लगा भी नहीं यार।
2: एक्स्ट्रा गाड़ी ले लिया,
0: गाड़ी एक्स्ट्रा के ले ली,
2: अभी पड़ी हुई है कि बेच दी,
0: और वो तो गई, उसके तो गंगा गए फूल वाला काम हो गया, वहां तो निकल ली। बात यह भी, अगर आपके पास भाई इनकम अच्छी है ना, तो आप ठीक है, पैर थोड़े से पसार भी लिए तो बढ़िया बात है, लेकिन ये किस्त वाली चीज में ना प्लास्टिक मनी का बड़ा बहुत बड़ा आता है।
1: So right.
0: इसका वो जो चीज आपकी आंखों के बंद आंखों में जा रही है ना, आपके पीठ के पीछे दे, आप ऑनलाइन बैठे हो, शॉपिंग कर रहे हो, बड़ा सा बटन दबाया और आपके खाते में पैसे निकल लिए, आपने देखे नहीं, और जो आप कैश ले रहे हो वो किसी से दे रहे हो ना, आप हाथ में पकड़ के यार कम हो रहा है ऐसा, थोड़ा सा बंदा सोच ले।
1: ये कहते हैं, इन फैक्ट मैं पढ़िया सीगा हार्वर्ड दी मेरे ख्याल ना स्टडी सी या फिर येल दी सी, दोनों में जो किसी की स्टडी सी, कि 24-25% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੋਟ ਦੀ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਫੋਨ ਜਿਸ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਹੀ NFC ਹੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ,
0: ਗੱਲ
1: ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਚੱਕਰ ਤੇ ਹੈ।
0: ਦਿਹਾੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਆਪ ਕਿਸੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਮੈਂ ਸੋਚੋ ਯਾਰ ਮਰਕਾ ਲਿਆ ਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੋਲੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰਡ ਤੇ ਪੇ ਕਰ ਦੋ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੇ ਕਰ ਦੇ ਕਿਆ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਆਪਕੋ ਵੀ ਠਾ ਲਿਓ ਭਾਈ
2: ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਅਭੀ ਕਰ ਦੋ
0: ਅੱਛਾ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਨ ਕਿਆ ਪਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਭਰੋਸਾ ਆਜ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਲਿਓ ਜੇ ਦੇਣੇ ਕੀ ਵਾਰੀ ਕਿਆ ਪਤਾ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾ
1: ਅੱਜ ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਸਗੋਂ ਪੰਗਾ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੇਅਰ ਡੂ ਯੂ ਡਰਾ ਦਾ ਲਾਈਨ ਕਿ ਲਾਈਫ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ
0: ਵਾਰਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਮਰਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਪਟਰੀ ਪਰ ਬੈਠਾ ਤਾ ਗੱਡੀ ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਥਾਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਉਸਕੇ ਪਾਸ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਮਰਨ ਆਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਤੰਗ ਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਮਰਨ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮਰੂੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਯੂ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਲੰਚ ਬੁਕਸ ਫੜਿਆ ਮਨ ਲੈ ਬਾਜਾ ਬਾਜਾ ਗਾਡੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰਾਂ ਕੰਮ ਤੇ
2: ਮਾਰਨਾ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਲਿਆ
0: ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰਾਂ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉ ਮਾਰਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਯਾਰ ਬਾਅਦ ਮਰੂਗੇ ਵੀ ਮਾਰਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਸਕਾ ਕੁੱਤਾ ਬੈਠਾ ਥਾ ਦਰਵਾਜੇ ਕੇ ਪਾਸ ਔਰ ਕੁੱਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੂ ਚੂ ਚੂ ਔਰ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਚੂ ਚੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾ ਯਾਰ ਜਹਾਂ ਵੋ ਬੈਠਾ ਨਾ ਉਸਕੇ ਨੀਚੇ ਕੀ ਲਾਇਕ ਮੈਂ ਕਹਾ ਬੋਲ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੀਂ ਹੋਰ ਬੈਠ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਕਾ ਵੀ ਵਹੀ ਜਾ ਕਰ ਮਾਰੀ ਆਦਤ ਬਣ ਰੱਖੀ ਬਾਈ ਹਮਨਾ ਰੋਣਾ ਰੋਣਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਲੈਣੀ ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਵਾਂਗੇ ਮਾਰੀ ਚੂ ਚੂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਾਂਗੀ ਬਾਈ
1: ਸਾਈਕਲ ਤੋੜਨਾ ਔਖਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ ਸਾਈਕਲ ਤੋੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਯਾਰ ਹਨਾ
0: ਜਾਂ ਤੂੰ ਲੈ ਲਈ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਪ ਕੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਤਾਗੇ ਬਾਈ ਆਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕਿਸ਼ਤ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾ ਗਈ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ
1: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਾਕਾ ਤੇ ਜੈਰੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ

मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नूं उनां दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसीं एथे इंडियन मसाले दालां ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की होया
0: अथे इमिग्रेशन दे एने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छड़ो फोन चको कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल
2: बलजीत व्याह वास्ते ज्वेलरी देखन तुन्ना ज्वेलर्स चलिए
3: यार उना दा डैंडी नॉग वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है
2: ओ हुन टेंशन नहीं हुन डैंडी नॉग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना ज्वेलर्स स्टोर खुल गया ओही भरोसा ते 30 साल तो वध वरियां दा एक्सपीरियंस रेडीमेड गोल्ड डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी तुन्ना ज्वेलर्स 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडी नॉग फॉर मोर इन्फो कॉल 0499-2535-45 ते

होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उना दे सुपनियां दा एक मजबूत कर हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वरियां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नु 0433-280-252 ते

होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उना दे सुपनियां दा एक मजबूत कर हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वरियां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नु 0433-280-252 ते 04332802522 ते

0: रोज रोज शॉपिंग हुंदिया ने, पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्हां ने।
1: सूरज देवता
0: की मतलब?
1: ओ कमलिए, सन करंट वालियां तो ज्यादा इन्हां ने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई।
0: मैनू नहीं पता, आपा भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे।
1: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल। कॉल सन करंट 0448-066-494 ते। साला तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम, सन करंट। देओ रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।
2: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मैनु भी दस दे सीक्रेट।
3: अमृत, एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दुध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
2: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। शर्त लागू।

0: रोज रोज शॉपिंग हुंदिया ने, पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता है इन्होंने।
1: सूरज देवता
0: की मतलब?
1: ओ कमलिए, सन करंट वालियां तो ज्यादा इन्होंने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई।
0: मैनू नहीं पता, आपां भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे।
1: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल। कॉल सन करंट 0448-066-494 ते। सालां तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम सन करंट। देओ रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।
2: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मैनू भी दस दे सीक्रेट।
3: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दुध तो तैयार। ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
2: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 04332802552 ते 04332802522 ते।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की हुआ
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
0: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल
2: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नूं उहनां दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है तुसी एथे इंडियन मसाले दालां ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम वी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394 दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच

0: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 ते या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हाँ जी।

साज करे तनखे गावे को जी ले फिर दे गावे को जापै दिसै दूर गावे को वेख हादरा हदूर कथ ना कथी ना आवे तोट कथ कथ कथी कोट।

तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझै होवै सच्यार तौलै उपर केता पार धरती होर परै होर तिस्ते पार तलै कवन जोर जी

ना पाए जाए। ए अंत न जाने कोय, बहुता कहिया बहुता होए, वड्डा साहेब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ, एवड ऊंचा होवे कोय तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तुमाए, केते मंगे जोत अपार, केत्या गंत नहीं विचार, केते खप टुटे वेकार, केते लैले मुकर पाहे, केते मूर्ख खाई खाए, केतिया दुख भूख सदमार, ए भेदात तेरी दातार, बंद खलासी पाने होए, और आख न सके कोए, जे को खाए क आखन पाए, ओ जाने।

आसन लोए लोए पंडार जो कुछ पाया सोए कावार कर कर वेखै सिर जनहार नानक सचे की साची कार आदेश तसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एक दूजी पौ लख होए लख वीस लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश ए तरह पत पवड़िया चढ़िया होए अकीस सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ै ठीस आखन जोर चुपै नहीं जोर जोर न मंगन दे न जोर जोर न जीवन मर न जोर जोर न राज माल मनसोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुती थिति वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथै पाए नानक गया जापे जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का खो करम केते पवन पानी बैसंतर केते कान महेश केते ब्रह्मे कार्त कड़िया रूप रंग के वेश केतिया करम भूमि मेर केते केते तूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवेश केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद केतिया खानी केतिया बाणी केते पात नरिंद केतिया सुरती सेव केते नानक अंतनांत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथै नाद मनोद कोट आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथै कार्त कड़िए बहुत अनूप कां किया गल्ला कथिया ना जाए जे को कह पिछे पछताए तिथै कड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथै कड़िए सुरां सिदा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथै हो

तीरे सुनियार, एरन मत वेद हथियार, पौ खला अगन तपताओ, पांडा पाओ अमृत तित ताल, करिए शब्द सची टकसाल।

अंग यार रेक पे को कह न सकत कह, अचल मूर्त अनुभव प्रकाशन तो कह जाय, कोट इंद्र इंद्रान सा सहान गणित जाय, तिर भवन में इव सुर नार्य सुर नेत नेत बंत्रन कहत, तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण सुमत जाम क्रिया छंद, नमस्तं अकाले नमस्तं कृपाले नमस्तं अरूपे नमस्तं अनूपे नमस्तं अभेखे नमस्तं अलेखे नमस्तं अकाये नमस्तं अजाये नमस्तं अगंजे नमस्तं अभंजे नमस्तं अडामे नमस्तं अठामे नमस्तं अकर्मं नमस्तं अतर्मं नमस्तं अनामं नमस्तं अतामं नमस्तं अजीते नमस्तं अभीते नमस्तं अभाये नमस्तं अडाये नमस्तं अनिले नमस्तं अनादे नमस्तं अछेदे नमस्तं अगाजे नमस्तं अगंजे नमस्तं अभंजे नमस्तं उदारे नमस्तं अपारे नमस्तं सुएक नमस्तं अनेक नमस्तं अभूते नमस्तं अजूपे नमस्तं निर्कर्मे नमस्तं निर्भर्मे नमस्तं निर्देशे नमस्तं निर्भेषे नमस्तं निर्नामे नमस्तं निर्कामे नमस्तं निर्धाते नमस्तं निर्घाते नमस्तं निर्दूते नमस्तं अभूते नमस्तं अलोके नमस्तं अशोके नमस्तं निर्तापे नमस्तं अथापे नमस्तं त्रिमाने नमस्तं निदाने नमस्तं अगाये नमस्तं अभाये नमस्तं त्रिवर्गे नमस्तं असर्गे नमस्तं प्रभोगे नमस्तं संयोगे नमस्तं अरंगे नमस्तं अभंगे नमस्तं अगमे नमस्तरमे नमस्तं जलाश्रे नमस्तं निराश्रे नमस्तं अजाते नमस्तं अपाते नमस्तं अमजवे नमस्तस्त अजवे अदेशं अदेशे नमस्तं अभेशे नमस्तं नितामे नमस्तं निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वद्याले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्तु देवे नमस्तं अभेवे नमस्तं अजन्मे नमस्तं सुबन्मे नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे नमो कालकाले नमस्तस्तु द्याले नमस्तं अवर्णे नमस्तं अमरणे नमस्तं जरारं नमस्तं कृतारं नमो सर्वदंदे नमो सत्वंदे नमस्तं निर्साके नमस्तं निर्भाके नमस्तं रहीमे नमस्तं करीमे नमस्तं अनंते नमस्तं महंते नमस्तत रागे नमस्तं सुहागे नमो सर्वसोखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वद्याले नमो सर्वपाले चात्री छंतो प्रसाद अरूप हैं अनूप हैं अजू हैं अभू हैं अलेख हैं अभेक हैं अनाम हैं अकाम हैं अदय हैं अभय हैं अजीत हैं अभीत हैं त्रिमान हैं निदान हैं त्रिवर्ग हैं असर्ग हैं अनिल हैं अनाद हैं अजय हैं अजाद हैं अजन्म हैं अवर्ण हैं अभूत हैं अभर्ण हैं अगंज हैं अभंज हैं अजूज हैं अजंज हैं

कालान कान अनुभूत अंग अभाव अंगत में तपार गुण गण उदार मुन गण बरनाम निर्भय निरकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलक्ष्य कंस आदि श्री तरम सर्वां वर्णांडिये अंडंड भांडिये चाचरी चंतो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निर्नामे अकामे यंग प्रिया छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र जानिए चाचरी छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्रे पर है पवित्र प्रतिशय अधीरशय अदृशय अकृशय भगवती छंतो प्रसाद कथते के आछे जदेश के आभेज वेश के आगाज कर्म के आभंज भरम के आभेज लोक के आदित शोक के अवधूत वर्ण के बेपूत करण के राजम प्रवाह के धर्म तुजा है के आशोक वर्ण के सर्वा अवर्ण के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के ब्रह्मंग स्वरूपे के अनुपव अनुपे के आद अदेव है के आप अभेव है के चक्रंग बहीन है के एक अधीन है के रोजी रजा के रही में रहा कह के पाक बेअब है के गैबल गैब है के अफल गुना है के साहल सुना है के कारण कुनंद है के रोजी दहंद है के राज रहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मानिए के सर्वत्र दानिए के सर्वत्र गौणे के सर्वत्र पौणे के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र भाओ के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र शोक है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेश के सर्वत्र मानिय सदैव प्रदानीय के सर्वत्र जापिय के सर्वत्र थापिय के सर्वत्र पान के सर्वत्र मान के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वंग कलीम के परमंग फहीम के अकाल अलाम के साहेब कलाम के हुसन वजू है तमामल रजू है हमेशा सलाम सली खुदमदामे गनी बुल शिकस्ते गरीब उल परस्ते मुलंदर मुकाने जमीन उल जुमाने तमीजुल तमामे रजूअल निदाने हरीफुल अजीमे रजाय यकीने अनेकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गनी मुल खिराज है निरकस स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है प्रभगत प्रभा है सो जुग सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तल सलाम है सदैवल कलाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओम आदरूप है अनाद स्वरूप अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गन त्रिवादे अगजे अगाधे सुभंग स्वरूपागे सो सर्वान रागे त्रिपुगत स्वरूप है अछज है छूत है कि नरकम परनास है पृथ्वी परवास है निरकत परवाह है सदैव सदा है बेपुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है निरकत सदा है बेपुगत परवाह है अनुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है चाचरी छंद अभंग है अनंग है अभेक है अलेख है अभर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अधूत है अनास है उदास है अधंध है अभंध है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है अनचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अभेक है अडा है अगा है असंभ है अभंग है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजात है चारपड़ चंतो प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रुआल चंद तो प्रसाद नमो नरगनासे सदैव प्रगासे अनंग स्वरूपे अभंग भूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निर्साग शरीक है अमित ओमिक है सदैव परवा है अजय है अजा है भागवती छंद तो प्रसाद के जाहिर जहूर है के
ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਮੇਸ਼ਰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿਰਾਗ ਹੈ, ਕਿ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਰੋਜੀ ਦਹੰਦ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਹੰਦ ਹੈ, ਕਰੀਮੁਲ ਕੁਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਸਨ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਗਨੀਮੁਲ ਖਰਾਜ ਹੈ, ਗਰੀਬੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ, ਹਰੀਫੁਲ ਸ਼ਕਨ ਹੈ, ਹਿਰਾਸਲ ਫਕਨ ਹੈ, ਕਲੰਕਨ ਪਰਨਾਸ ਹੈ, ਸੁਮਸਤਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਅਗੰਜਲ ਗਨੀਮ ਹੈ, ਰਜਾਇਕ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਸੁਮਸਤਲ ਜੁਬਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਰਾਹ ਹੈ, ਕਿ ਨਰਕਮ ਪਰਨਾਸ ਹੈ, ਬਿਸਤਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬਰ ਗਵਨ ਹੈ, ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਵਨ ਹੈ, ਤਮਾਮਲ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਅਦੀਸ ਹੈ, ਪਰੰਗ ਪਰੰਗ ਈਸ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਅਦੀਸ ਹੈ, ਅਦੇਸਲ ਅਲੇਖ ਹੈ, ਅਭੇਸਲ ਅਭੇਖ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜੁਮਾ ਹੈ, ਅਮੀ ਕੁਨੁਮਾ ਹੈ, ਕਰੀਮਲ ਕੁਮਾਲ ਹੈ, ਗਜੁਰ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਅਚਲੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਕ੍ਰਮਿਤੋ ਸੁਭਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਅਜਬ ਸਰੂਪ ਹੈ,

गुणगन मुदाम हर बर अगंज हर नर प्रभंज अनगन प्रणाम मुन मन सुनाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनभव अनास मुन मन प्रगास गुणगन प्रणाम जलथन मुदाम अनछिज अंग आसान अभंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिसविस अभंड जल थल महंत दिसविस बेअंत अनपौ अनास त्रित तर तुरास आजान वा एक सदा ओंकार आद कथनी अनाद खल।

अंठन अबार आडीठ तरम अत ठीठ करम अन बरन अनंत दाता मंत हर बोल मना शांतो प्रसाद करना ले आर काले है कलखंडर है मैं मंडर है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है धृत के तरण है जग के करण है मनमानी है जग जानी है सर्वंकार है सर्वंकार है सर्वपाशी है सर्वनाशी है करनाकर है विश्वम्भर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करनाकर है अजपाजप है अतपात्व है अकृताकृता है अमृतामृता है अमृतामृता है करनाकृत है अकृताकृता है तरणीतृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृता है अजभाकृत है अमृतामृत है नर नायक है कलघायक है विश्वम्बर है करुणालय है निर्मनायक है सरूपायक है पाव पंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जब जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकर है हरताहर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है प्रजांग प्रया छंद नमो सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बिंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम संक्षात रूपे नमो परंग ततंग अतंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो त्यान त्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पोज पोजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंगूते कलंकार रूपे अकलंकार अलंके नमो आसे आसे नमो बांग बंके अभंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी कामे एक श्री छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनास अकाश अगंज भंज अलख पख अकाल दयाल अलेख अभेख अनाम अकाम अगा अडा अनाथे परमाथे अजूनी अमूनि न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अभर्मंग अगजे अलेखे पुयांग प्रजा छंद नमस्तुल प्रणामे सुमस्तर प्रणासे अगंजन अनामे सुमस्तल निवासे निर्कामंग बभूते सुमस्तंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सो तर्मंग प्रभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करीमल कुरंदा सुमस्तल निवासी अजायब बभूते गजायब गनी में हरियंग करियंग करीम रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयंबं सुमंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे।

श्रीपद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। वीर अपार बड़े बड़े आर अवतार इसार की तार बिछैया। तोर देश बुलंद बवासन माते गजान के मान मलैया। गाड़े गड़ान के तोरण हर सुबातन ही चकचार लवैया। साहेब श्री सबको सिर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया। दानव देव फिनन निशाचर पोत पवेख पवान जपेंगे। जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे। पुन प्रतापन बार जय तुन पापन के बहु पुंज खपेंगे। सात समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र सबै अब लोग जपेंगे। मानव इंद्र गजिंद नरातम जोन त्रिलोक को राज करेंगे। कोट स्नान गजात गदान अनेक स्वंबर साज भरेंगे। ब्रह्म हेश्वर विष्णु सचिपत अंत

0: नहात फिरयो लिए सात समुंदरन लोग गयो पर लोग गो आयो बास कियो बखियान सो बैठ कै ऐसे ऐसे वैस बतायो साच कहो सुन लियो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो कहूं ले पायन पूतरियो सिर कहूं ले लिंग ले ढलकायो कहूं लिखियो हर अवाच दिशा में कहूं पुछा को सी सुनवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूड़ क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूड़ क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो।
1: कवियो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुट सबै तुम कावो आप हाथ दै मोय बचावो सुखी वसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर इच्छा निज कर दै करिया सब बैरन को आज संगरिया पूर्ण होए हमारी आशा और भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ जो बर जाओ सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारिया चुन चुन सत्र हमारे मारिया आप हाथ दे मुझे उबरिया मरण काल का त्रास नवरिया पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तुजो करियो रक्षा राख।

आए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विषण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जो थियो, जमन काल सब लोग सुवारा, नमस्कार है ताए हमारा, जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जचन उपजायो, आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार किसी को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी, शिवकन को शिवगुण सुख दियो, सतन को पलमो बद कियो, काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतम दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, काट काट के पट पट की जाने, जब उदकरख करा कर तारा, प्रजा तरत तब दे अपारा, जब आकर्ष करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ, देते बदन सृष्ट सब थारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही तेरे निरालम, जानत बेद भेद अल आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड उचारत पेदा, जा को पेव न पावत बेदा, ताको कर पाहन अनमानत, महामूड किछ भेद न जानत, महादेव को कह सदा शिव, निरंकार कर चिंत नहीं पेव, आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत पिन पिन तोय तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, कहब सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग प्यो राव कई पूपा, अंडज जे राज से तजकिनी, उत्पुज खान बहु रज दीनी, कहो फूर राजा है बैठा, कहो सिमट पयो शंकर कैठा, सगरी सृष्ट दिखाए चंभव, आज जुगा स्वरूप सुजंभव, आवरछा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रन काता, जे आज तो तब सरनी परे, तिन के दुष्ट दुख्त है मरे, पुरख जवन पाग परे तिहारे, तिन के तुम संकट सब तारे, जो कल को एक बार तिहाय है, ताके काल निकट नहीं आए है, रच्छा होए ता सब काला, दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे न हर हो।

0: अंतर आत्मा समाले आप छड सदा रह परने गुरबिन अवर न जाने कोए कह नानक सुनो संतो सो सिख सरमुख होए
1: जे को गुरु तेवे मुख होवे बिन सद

तही गुणी संसार परम सुत्ता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वस्या बोले अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनु अंत दिन हर

अगन सब इको जई करता है खेल लचाया जंत सुभाना ता जमया परिवार भला पाया लिव छुड़की लगी तरसना माया अमर वरताया ए माया जित हर विसरै मोह उपजै पौ दूजा लाया कह नानक।

दा एक प्रमाण देता है अग चाहे हां जे पाला चाहे सर्दी चाहे मैं अग की बेइज्जती कर दे ते की करेगा अगे पाला के करे रात चाहे मैं सूरज की बेइज्जती कर दे सूरज चढ़ेगा रात ते रहनी कोई नहीं सूरज कहे रात चंद अनेरा के करे हनेरा चंद्रमा का की बिगाड़ है आखे ने मैं चंद्रमा ढक लवेरा कहते ने नहीं वो तो चमकदा पिया दूरों दसदा चंद अनेरा के करे पौन पानी के आजाद ए पौन पानी जात पात उच्ची नीवी का जिवें कहने कहा गया से शूदर जड़े ने हाथ लाउन चीज पिटी जांदी है साहब जी कहंदे ने नहीं धरती चीज ही क्या करे जिस विच सब कुछ हो चीजा भावे सोहनिया तो सोहनिया हो सुगंधी होवे या गंदगी होवे धरती का ही बिगाड़ सकदिया ने सब मिट्टी हो जानिया ने धरती चीज ही क्या करे जिस विच सब कुछ होए नानक तां पत जानिए जां पत रख सोए अकाल पुरख इज्जत रखे सिमरन इज्जत रखदा तेंडे सिमरन हबक शलदम बिख मना डिठम कोई कोई औखी गल नहीं जे तेरा सिमरन होवे जिस पत रखे सच्चा साहिब नानक मेट न सके कोई पूरे गुरु ने कृपा की मेरी पूरी इज्जत रख ली होए सर्वदयाल जिन्ने जीव जंत सन मेरे वास्ते सारे दे सारे प्यार नाल दया नाल भर गए ना को मेरा दुश्मन रहा ना हम किसके बहराए पागा वाला वो बंदा जिधर जाए हाथ जोड़ के प्यार नाल हर एक बंदा मिले हर एक जी आया नू आखे पर ए गुण विच होणगे ते तां अवगुण आ रहे बंदे दा ते सन्मान कदी नहीं हुंदा अवगुण आ रहे नू कौन जी आया कहिंदा अवगुण आ रहे नू ते बंदा घर नू आवे ते दरवाजा बंद कर लैंदा ए किते अंदर ना आ जाए इथे गुण चाहिए ने जे परमात्मा कृपा करे गुण पैदा करता है इथे फिर एक खतरा होर हुंदा गुण होने चाहिए ने गुमान नहीं होना चाहिए गुण थोड़े होंदे ने गुमान बहुत ज्यादा हो जाता है गुणा का नहीं सब गुण तेरे मैं नहीं कोई बिन गुण कीते भगत ना होए परमात्मा मेरे नाल है सारी कायनात ही मेरे ते दयाल है जिवें कहा ये पंक्तियां ते याद करन वालियां ने हर एक प्राणी वास्ते सतगुरु कहंदे ने एक सज्जन सब सज्जना तेरा एक सज्जन बन जाए ना सारे ही सज्जन बन जाणगे साहिब गुरु नानक देव दा एक सज्जन से सप भी सिर ते छां करदे पए ने हद होगी सप्पा नूं कहंदे ने दुध पियाओ तां वी डंग मारदा लेकिन सप भी छां कर वह भी मित्र बन गए वह भी सेवादार बन गए जां करता वल तो सबको वल सब दर्शन देख करे शाबास शाह पातशाह सब हर का किया सब जन को आए करे रह रास एक सज्जन सब सज्जना एक वैरी सब वाद रब वैरी बन जाए ते कायनात सारी वैरी परमात्मा मित्र बन जाए ते सारे मित्र ये राहो दी पंक्ति शब्द दी टेक शब्द दा तोरा शब्द दा सार अंश आओ शब्द दियां पहलियां पंक्तियां तो विचार आरंभ करिए चित विरतियां एकाग्र करो मैं अर्ज करा जदो सतगुरु दे कोल आउने आ ना तन करके ते आ जाने आ मन करके भी आ जाइए ना पिछा भुल जाए अगे दी गल कीती जाए अगाहां कुतरांग पिछा फेर ना मुड़ा
ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਫੇਰ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਵੇਖ।

0: ना आ गया ते गुरु दे कोल आ जा, तन मन करके आ जा। जेड़ा आ गया उसने भाग जा गया, वो हर पासे पूरा हो गया, हर पासे ओदी इज्जत बन गई। सतगुरां ने परमात्मा नाल जोड़िया, आखिया फिकर ना कर, चिंता ना कर, परमात्मा तेन ओ इज्जत बख्शेगा जेड़ी इज्जत नू कोई खतरा नहीं। दुनिया दी इज्जत नू ते नित खतरा। बड़ा सुंदर कहा, ये लोक लाज इन्हें रब तो दूर कर छड़े है। फरीदा दर दर वेशे गाखड़ी चलना दुनिया पत, फकीरी बहुत औखी, मैं ते दुनिया दे वांगू चल रहा जिवें आम लोग चलते। बन उठाई पोटली किथे बन्या काते, लोक लाज दी मैं पोटली सिर ते रखी, इनू किथे सुट के जावां। बंदा अपने लई नहीं जी हुंदा, ये विचार बड़े ध्यान नाल समझना। बंदा किसे लई जी रहा, बंदा दा जीवन ध्यान नाल वेखो। कोई पुत्र लई जी रहा, कोई धी लई जी रहा, कोई पत्नी लई जी रहा, कोई मित्रां लई जी रहा, कोई धन लई जी रहा, कोई दुश्मनां लई जी रहा। बंदे अपने आप वास्ते के मैं की हां। भाई नंद लाल जी ने बड़ा सुंदर कहा, कहने ने तू मैनू इन्ने स्वास दिते अनगिनत ने, और एदा कोई मुल नहीं मेरे को लिया, मुफत दिते, स्वास दिते। मैं धन कमाउण लई ते स्वास लाए। एक बंदा दिहाड़ी करदा, अठ घंटे कम कीता, अठा घंटिया दिहाड़ी दे पैसे मिल गए, पर स्वास उहने किन्ने किस पासे लाए, कदी ध्यान कीता अठा घंटे स्वास किन्ने लाए। बंदा स्वास देंदा ते दुनिया बिहाजदा, कहंदे ने एक स्वास भी मैं इस पासे नहीं लाया, मैं कौन हां, मैं कादे वास्ते संसार ते आया, मेरा असल कर्म की है, पिछो कित्थे आया ते अगे मैं केड़े पासे जाना। उन्हां दे बचन सुना दिया, यक दम बखेश रह न बुरदम के केस्तम। एक स्वास भी नहीं लाया, बेचारा मैं कौन हां, ऐ वाहे अफसोस है, शोक है, ऐ वाहे नगद जिंदगी अमरायगा गुजश्त। नगदी की हुंदी है, नगदी हुंदी है जेड़े नोट हाथ विच होण। मनुख दी नगदी की है स्वास, स्वास गए सांस गया, काया टल पाए, काया उसे वेले ही टल जांदी है, हाथ जिथे हैं उथे रह, अखां खुलियां ते खुलियां रह जांदियां ने, मरे बंदे दियां बंद करने हैं। बंदे कदी ए भी विचारे है, मैं कौन हां, मैं कादे वास्ते इत्थे आया, रब दा साथ मैनू मिलिया के नहीं। जे आए हां रब दा साथ लैणा है, ते फिर दुनिया दा साथ जेड़ा इस नू पासे करना पवेगा। दुनिया दा साथ भी तां निभेगा जे रब दा साथ है, फिर बंदा हर एक दा ही भला करेगा, किसे नाल भी बुरा नहीं करेगा। आओ ध्यान धरो, चित विरतियां नू एकागर करो। ये टाइम किसे दा नहीं, ये टाइम तुहाडे वास्ते है, और परमात्मा नू अर्पण कीता है कि तेरे दर ते जेड़ा बहना है, मेरे सिर ते हाथ रख, मैं तेरा होके बैठा, मैं किसी होर दा होके ना बैठा। ए बख्शिश कर, ध्यान करके जुड़ जाइए। प्यार नाल आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।
1: सतनाम।

नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका पुण्य दर्शन में। मैं हूं आपका दास, जो आपके दिन को पॉजिटिव और ऊर्जावान बनाने के लिए हमारे शास्त्रों के अथाह सागर से ज्ञान के मोती चुन चुन कर आपके लिए लाता है। मित्रों, हमें अपने जीवन में एक सुंदर आदत अवश्य जोड़नी चाहिए, भगवान की कथाओं को सुनने की, शास्त्रों को पढ़ने की और उनके संदेशों को दूसरों तक पहुंचाने की, क्योंकि शास्त्रों का श्रवण मात्र ही हमारे हृदय को निर्मल करता है, हमारी बुद्धि को शुद्ध करता है और हमारे जीवन को सही दिशा प्रदान करता है। हमारे वैदिक ग्रंथों में अनेक स्थानों पर श्रवण की महिमा का वर्णन मिलता है। भक्ति के 9 अंगों में भी सबसे पहले श्रवणम अर्थात भगवान की कथाओं को सुनने का उल्लेख किया गया है। यह श्रवण केवल जन्म लेने के बाद ही नहीं, बल्कि माता के गर्भ में भी किया जा सकता है। सोचिए, भगवान ने हमारे शरीर की रचना कितनी अद्भुत बनाई है। जब हम सो जाते हैं तब हमारी अनेक इंद्रियां विश्राम की अवस्था में चली जाती हैं, किंतु कान यानी कर्ण ऐसे हैं जो तब भी सक्रिय रहते हैं। यही कारण है कि श्रवण का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर अत्यंत गहरा पड़ता है और इस श्रवण के माध्यम से जो प्रभाव पड़ता है उसे जानते हैं छोटे से अंतराल के बाद।

पुण्य दर्शन सुन रहे हैं आप अपने दास के साथ। हमारे शास्त्रों में अनेक उदाहरण मिलते हैं जिन्हें गर्भ में ही दिव्य ज्ञान का श्रवण किया। भक्त प्रह्लाद, जिन्होंने अपनी माता के गर्भ में रहते हुए देवऋषि नारद से भगवान की भक्ति का ज्ञान सुना और जिसका परिणाम हुआ कि वह जन्म लेते ही भगवान विष्णु के परम भक्त बन गए। इसी प्रकार महाभारत के एक वीर योद्धा अभिमन्यु का उदाहरण भी प्रसिद्ध है। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। जब वह अपनी माता के गर्भ में थे तब अर्जुन सुभद्रा को युद्ध की जटिल रणनीति चक्रव्यूह के विषय में समझा रहे थे। गर्भ में स्थित अभिमन्यु उस वार्ता को सुन रहे थे। उन्होंने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि को तो सुन लिया, किंतु उससे बाहर निकलने की विधि सुनने से पहले ही सुभद्रा को नींद आ गई और उनकी वार्ता अधूरी रह गई। इसी कारण महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेद कर उसमें प्रवेश तो कर लिया, किंतु कौरवों के पक्ष के जयद्रथ की योजना के तहत 7 वर्ष के अभिमन्यु की निर्मम हत्या कौरवों द्वारा कर दी गई। क्या हुआ उस दुष्ट जयद्रथ का इसके बाद? कैसे लिया अर्जुन ने अपने पुत्र की मृत्यु का बदला, बताता हूं थोड़ी देर में। मैं यूं गया यूं आया।

पुण्य दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दास। तो अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, जिसने माता सुभद्रा के गर्भ से चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सीख लिया था, किंतु बाहर आना नहीं। उससे बाहर निकलने की पूर्ण विधि ना जानने के कारण अभिमन्यु की वीर गति के बाद पांडवों के शिविर में शोक की लहर दौड़ गई। जब अर्जुन को यह समाचार मिला कि कैसे उनके प्रिय पुत्र अभिमन्यु को अनेक कौरवों के महारथियों ने मिलकर अन्याय पूर्वक मार दिया और जयद्रथ ने अन्य पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया, तब अर्जुन का हृदय क्रोध और दुख से भर उठा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले वह जयद्रथ का वध कर देगा, और अगर ऐसा ना कर सका तो वह स्वयं अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग देगा। कौरवों को यह प्रतिज्ञा सुनकर बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने अपनी पूरी सेना जयद्रथ की सुरक्षा में लगा दी। जयद्रथ को छुपा दिया सूर्यास्त तक। दिन भर भयानक युद्ध होता रहा, लेकिन समय भी तेजी से बीत रहा था। अपने भक्त और मित्र अर्जुन की प्रतिज्ञा को पूर्ण कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से सूर्य को कुछ समय के लिए ढक दिया। युद्ध भूमि में ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो सूर्यास्त हो चुका हो। यह देखकर कौरव सेना प्रसन्न हुई और जयद्रथ को अपनी सुरक्षा घेरे से बाहर निकाला। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ देखो, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा है। उसी क्षण भगवान ने अपनी योग माया से सूर्य पुनः प्रकट कर दिया। अर्जुन ने तत्काल अपना दिव्य बाण छोड़ा और जयद्रथ का वध कर दिया और अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। यह लीला हमें सिखाती है कि जब कोई भक्त धर्म और सत्य के लिए प्रयास करता है, तब भगवान स्वयं उसके सहायक बनते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम निश्चय पूर्वक घोषणा कर दो कि मेरे भक्त कभी नष्ट नहीं होते। मित्रों, अभिमन्यु की वीरता, अर्जुन की प्रतिज्ञा और श्री कृष्ण की कृपा हमें यह स्मरण कराती है कि जीवन में धर्म के मार्ग पर चलने वाले की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, और धर्म के मार्ग के लिए श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर कीजिए विचार और मुझे दीजिए आज्ञा, फिर लेकर आऊंगा आपके लिए पुण्य दर्शन। मैं हूं आपका दास। नमस्कार।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: ਚੱਲਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੱਡੀ ਆਹ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਓਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਲ ਮੇਜਰ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੇ ਟਾਇਰਸ ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ ਲਈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਟਾਇਰ ਫੋਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਸਰਵਿਸਿੰਗ, ਮਕੈਨਿਕਲ ਰਿਪੇਅਰਸ, ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਰੀਪੇਮੈਂਟਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ। ਟਾਇਰ ਫੋਰਸ, ਯੂਨਿਟ 1, 19-25 ਸੋਮਾਟਨ ਰੋਡ, ਕੈਂਪਲਫੀਲਡ। ਕਾਲ 03908-6655 ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ tireforce.com.au।
1: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ AI ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਕਿਉਂ? ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਡਿਲੇ ਇਨ ਲਾ ਇਜ਼ ਡੈਮੇਜ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਫੈਮਿਲੀ ਇਸ਼ੂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਸਲ ਲਾਇਰਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ, ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਆਪਣੀ। ਕਾਲ 422-905-860 ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ bansallawyers.com.au।
2: क्या आप जानते हैं कि बच्चों की उम्र 5 साल की होने से पहले उनका दिमाग लगभग 90% विकसित हो जाता है? निशुल्क किंडर 3 और 4 साल के बच्चों को प्राथमिक स्कूल जाना शुरू करने से पहले 2 साल की उपयोगी शिक्षा उपलब्ध करवाता है और परिवारों के पैसों की बचत कराता है। किंडर में बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं, जिससे उनको महत्वपूर्ण सामाजिक, भावात्मक और बौद्धिक कौशल विकसित करने में और अपने दोस्त बनाने में मदद मिलती है। vic.gov.au/kinder पर और अधिक जानकारी प्राप्त।
3: अपने घर को इलेक्ट्रिक बनाने की सोच रहे हैं? ऐसा करना आपकी सोच से अधिक आसान हो सकता है। इजी इलेक्ट्रिक SEC आपको छूट और बचत का हिसाब लगाने, उपकरणों की तुलना करने और भरोसेमंद कारीगरों की खोज करने में सहायता देता है। ये सब कुछ एक ही स्थान पर। आप बिजली के बिलों पर प्रति वर्ष $2,000 से अधिक की बचत कर सकते हैं। शुरू करने के लिए तैयार हैं? easyelectricscc.com.au पर जाएं। बिजली के बिलों पर बचत करना SEC के साथ एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है। विक्टोरिया सरकार, मेलबर्न द्वारा प्राधिकृत।
4: सोना चाहिदा,
5: भरोसा चाहिदा,
4: क्वालिटी ते बाईबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स, स्टॉकलैंड पॉइंट, कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स, 310/2 Main Street, Point Cook। Call 0493

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून।
2: बेंजी की हाल है पिट दर्द दा
1: जदों दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया सब कुछ ठीक है। थैंक यू एदे बारे दसन लई।
2: और सुनो हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेवेटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदन लई कांटेक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स। वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। Search us online or call 0433-465-492.

0: ਚੱਲਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੱਡੀ ਆਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਲ ਮੇਜਰ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੇ ਟਾਇਰਸ ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ ਲਈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਟਾਇਰ ਫੋਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਸਰਵਿਸਿੰਗ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਰਿਪੇਅਰਸ, ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਰੀਪੇਮੈਂਟਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਲਵੇਸ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ। ਟਾਇਰ ਫੋਰਸ, ਯੂਨਿਟ 1, 19-25 ਸੁਮਾਟਨ ਰੋਡ, ਕੈਂਪਲਫੀਲਡ। ਕਾਲ 03908-6655 ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ tireforce.com.au।
1: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ AI ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਕਿਉਂ? ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਡਿਲੇ ਇਨ ਲਾਅ ਇਜ਼ ਡੈਮੇਜ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਫੈਮਿਲੀ ਇਸ਼ੂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਸਲ ਲਾਇਰਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ, ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਆਪਣੀ। ਕਾਲ 422-905-860 ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ bansallawyers.com.au।
2: क्या आप जानते हैं कि बच्चों की उम्र 5 साल की होने से पहले उनका दिमाग लगभग 90% विकसित हो जाता है? निशुल्क किंडर 3 और 4 साल के बच्चों को प्राथमिक स्कूल जाना शुरू करने से पहले 2 साल की उपयोगी शिक्षा उपलब्ध करवाता है और परिवारों के पैसों की बचत कराता है। किंडर में बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं, जिससे उनको महत्वपूर्ण सामाजिक, भावात्मक और बौद्धिक कौशल विकसित करने में और अपने दोस्त बनाने में मदद मिलती है। vic.gov.au/kinder पर और अधिक जानकारी प्राप्त।
3: अपने घर को इलेक्ट्रिक बनाने की सोच रहे हैं? ऐसा करना आपकी सोच से अधिक आसान हो सकता है। इजी इलेक्ट्रिक SEC आपको छूट और बचत का हिसाब लगाने, उपकरणों की तुलना करने और भरोसेमंद कारीगरों की खोज करने में सहायता देता है। ये सब कुछ एक ही स्थान पर। आप बिजली के बिलों पर प्रति वर्ष $2,000 से अधिक की बचत कर सकते हैं। शुरू करने के लिए तैयार हैं? easyelectricscc.com.au पर जाएं। बिजली के बिलों पर बचत करना SEC के साथ एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है। विक्टोरिया सरकार, मेलबर्न द्वारा प्राधिकृत।
4: सोना चाहिदा,
5: भरोसा चाहिदा,
4: क्वालिटी ते बाईबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स, स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स, 310/2 Main Street, Point Cook। Call 0493-536

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून।
2: बेंजी की हाल है पिट दर्द दा
3: जदों दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया सब कुछ ठीक है। थैंक यू एदे बारे दसन लई।
2: और सुनो हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेविटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदन लई कॉन्टैक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स। वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 04334654 92।
3: रोज रोज शॉपिंग हुंदियां ने,
2: पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्होंने।
4: सूरज देवता
2: की मतलब?
4: ओ कमलिए, सन करंट वालियां तो ज्यादा इन्होंने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई।
3: मैनू नहीं पता, आपा भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे।
4: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल। कॉल सन करंट 0448-066-494 ते। सालां तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम सन करंट। देओ रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।
2: बलजीत, ब्याह वास्ते ज्वेलरी देखण तुन्ना ज्वेलर्स चलिए।
5: यार उना दा डैंडी नॉग वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है।
2: ओ हुण टेंशन नहीं, हुण डैंडी नॉग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना ज्वेलर्स स्टोर खुल गया। ओही भरोसा ते 30 साल तो वध वरियां दा एक्सपीरियंस। रेडीमेड गोल्ड डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी। तुन्ना ज्वेलर्स 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडी नॉग। फॉर मोर इन्फो कॉल 0499-2535-45 ते।
6: आ किथे वज गई तेरी गड्डी?
7: गड्डी दा ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वालियां नू लीगल वालियां नू इत्थे प्रदेश विच समझाऊंगा किवें?
6: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंक स्मैश रिपेयर वालियां ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम अते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383-85-77-48 ते। सिंक स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
8: कि तुसी जानदे हो कि बच्चे दा लगभग

0: ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस की हर लोड़ ले, याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू की हो यहाँ, इन्हीं टेंशन चले लेते हो ये
1: यार। की दसा, मॉर्गेज का काम आज भी नहीं बनिया।
0: अज सिमी पे NGIC, उन्होंने अपना मॉर्गेज UV फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता।
1: अच्छा, असि भी उन्होंने कॉन्टेक्ट कर दे फिर ता।
0: जेकर थानू भी लोड है होम लोन, रीफाइनेंस, कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी, ता आज ही कॉन्टेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम UV फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0433-8833-11 और विजिट uvfinancial.com.au। सोना चाहिदा,
2: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाईबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493-536-042। ऑर्बिट होम्स अपने इरादे आवान सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उनां दे सुपने आदा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानु दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नु 0433-280-252 ते
3: 04-7-7-7-3।
4: याद रखो 9077-9733।
3: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
4: हर कदम तो आड़े नाल।
5: बहुत लंबे समय तो औरतां दी सेहत नूं गंभीरता नाल नहीं लिया गया है, हुण बेहतर करन दा समा है। बेहतर सहायता, वधेरे स्पष्ट जानकारी अते वधेरे आसानी नाल उपलब्ध देखभाल। एंडोमेट्रियोसिस विच सहायता, IUD लगवाउन समय मुफ्त दर्द राहत अते मेनोपॉज दौरान सहायता। असी बेहतर हो रहे हैं तां जो तुसी भी बेहतर हो सको। womenshealth.vic.gov.au ते जाके होर जानो। विक्टोरियन सरकार मेलबर्न द्वारा जारी।
6: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
7: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
6: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
8: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों। याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजुर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au। रेडी सेट।

There is sadness and there is helplessness. ये दो अलग अलग गल्लां ने, ठीक है? सैडनेस तो कभी कभी सोहनी हो सकती है, हेल्पलैसनैस कभी नहीं होती। मेरा एक शेर है हुण उदा

0: वाह वाह वाह वाह वाह तूर साहब, क्या गाने लबाने हो यार।
1: कड़े मैं ब्यादी रे मां।
0: वाह वाह वाह। रेडियो हांजी 1674 एएम ते थवाडा निग्गा निग्गा वधिया वधिया ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सुंदर सुंदर स्वागत। मैं हां कृष्णा एंड मेरे नाल जुड़ चुके ने मेरे हरियाणवी भरा
1: राम राम सारे भाई
0: मिस्टर थूर। इनकी गाड़ी का रेजो भी है मिस्टर थूर ये। एंड उम्मीद करते हैं थोड़ा दिन अज का जिदा का भी स्टार्ट हो गया हो, जिन्ह ने हजे स्टार्ट करना, कहीं मेरे वर्गे भी होंगे जो रेडियो से नहीं आते तो हजे भी सोरे होंगे, करूँगे जो दो तीन घंटे बाद स्टार्ट, तो दिन वधिया जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, मतलब बेस्ट एंड बेस्ट जाएगा। इदा ही होना चाहिए कि नहीं?
1: ऐसी ऐसी उम्मीद लेके चलो जी। परमात्मा आपके सारे काम सफल करे। आप अपने घर से निकलो, शाम को घर पे आओ वजी, मैं ये काम करते रहना जिस जो शाम को आ जाओ,
0: ये तो जरूरी है भाई।
1: उम्मीद करते हैं जी आपका सारा दिन बहुत बढ़िया जा रहा होगा, जाएगा, और इसके साथ साथ आप रेडियो हांजी का भी एंजॉय कर रहे होगे भाई साहब। और आज की डेट में मैं और कृष्णा साथ देंगे इस वाले सेगमेंट में
0: जी,
1: और हमारे किंग साहब कहीं बिजी हो रखे हैं जी।
0: जी, किंग साहब थोड़े बिजी ने, तो असी बहुत ज्यादा काले सके, साडे तो रुक नहीं हो रहा, असी सके हमने तो अभी शुरू करना है।
1: अब तो रेसिज्म में आ गए जी, काले कह रहे, मेरा रंग देख के बात मत करो आप। आप तो गोरे चिट्टे हो गए सर।
0: नहीं, आई मीन काल, व्हाट इज काला, व्हाट डू यू से काला, इंपेशेंट, असी इंपेशेंट हो रहे सीगे कि थोड़े नाल छेती छेती,
1: एक बंदा देहाती बोल रहा है, दूसरा सिद्धा अंग्रेजी
0: में मिक्स मैच हो रहा है। दुआबे का थोड़ा ना ये वाला टच जाता नहीं है मेरे ख्याल नाल, कुड भी मेरे ख्याल नाल शायद दुआबे तो लोग ज्यादा पहले पहले ज्यादा लोग आना शुरू हो गए सके बाहर। सो जद जो मैं स्कूलिंग करता पेगा बहुत ही ठेठ पंजाबी सुनने नूं नहीं मिलती ही।
1: ओके,
0: इफेक्ट है। चलो असी तो खास कपूरथला तो ही सके, पर समझो लोइया सुल्तानपुर शेखपुर ये मेन मेन पिंड से साडे आसे पासे है ना, उतों भी जेडे स्टूडेंट्स आते थे दे वुड टॉक लाइक दिस ओनली,
1: अंग्रेजी बोला दे।
0: हाँ, मतलब मिक्स मैच जा ही हुंदा हैगा, खासकर मतलब जब तक ओ वाली उम्र हो गई सत्तवीं अठवीं नौवीं वाली
1: उनके पुराने पूर्वज।
0: हाँ, मैनू लगता है, मैं जो हूँ सोचना इस चीज़ को फिर मैं लगता कि मे बी ये ब्रशअप हो जाता हौली हौली ना कल्चर के अंदर,
1: मतलब उनके पुराने बुजुर्ग विदेश में चले गए,
0: काफी तो लोग गए
1: जिदा कि इदा उदा
0: साढ़े उत्थे आसे पासे बेगोवाल है ना भुलथ, यह पक्के पिंड ने, इन्हों की मतलब कि 15-20 साल पहला दस होंगे आ रहे आप कि खाली ने पिंड बिल्कुल टोटली।
1: हाँ,
0: कि लोग सारे लोग बाहर रेंदे है, दे यूजली कम अराउंड आह सर्दियां जो अपने उत्थे हो जाने ना अक्तूबर तो लैके मार्च के लोग आए होंगे है, तो वह दिसदा भी है बाजार ज्यादा भरे होंगे है, थोड़ी मतलब कह लो देर इज पॉजिटिविटी थोड़ा बहुत है ना, कुड बी दैट, हो सकता है रीजन।
1: बढ़िया लगा सबसे बात करके, और सुनते सारे अपने सुन रहे हैं, आज मंगलवार का दिन है
0: जी,
1: महावीर का वार है जी आज।
0: अच्छा, वेरी गुड, वेल
1: डन। पता क्या, कोई चीजें ना बचपन में ऐसी सुन रखी है उन्हें और आपकी यादाश एकदम ताजा कर दे है ना। जैसे हमारे गांव में पहले मैंने श्रोत से बात पहले भी शेयर कर रखी है, हमारे मार्कंडेश्वर मंदिर जी ऋषि जी का मंदिर है। हाँ। तो वहां पे सुबह सुबह एक सोमवार को भजन चलाया करता था, आपने सुना होगा, सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आवेंगे तेरे काम।
0: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ।
1: यो जब भी ये शब्द आज भी सुनू ना मैं तो मतलब वो बैक ले जा 30 साल पुरानी वो अपनी यादा में ना। एक ये भी था, एक था जब मंगलवार हुआ था तो उसकी कैसेट बदल जा करा थी, वो उसमें लाभ करा था।
0: हाँ।
1: आज मंगलवार है, महावीर का वार है।
0: अच्छा,
1: तो ये भी चीज दिमाग में रहेगी।
0: हाँ।
1: तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जहां आपने पहली दफा बड़े गौर से सुनी है और पहली दफा आप गए हो कहीं पे, तो वो चीजें जब भी आपको वो चीज दोबारा करने को मिले ना तो आप दोबारा फिर उसी जोन में चले जाओ।
0: फैक्ट कि कोई पुरानी याद कई गाणियां नाल स्मेल्स दे नाल है ना, ते कई बार हुंदा कि आपां कहदे ना डेजा वू यार, ए चीज़ तां पहले भी होई पई है,
1: स्मेल की क्या बात करी,
0: नॉस्टैल्जिक वैल्यू हुंदी हर चीज दी।
1: पिछले बार मैं जब अमेरिका गया था ना तो मैंने वहां एक परफ्यूम लिया तो कनाडा में था।
0: अच्छा,
1: तो वो गिफ्ट कर दिया पर उसकी फ्रेग्रेंस बड़ी अच्छी थी।
0: ओके,
1: तो मैंने फिर जब अमेरिका में गया वहां से ले लिया।
0: अच्छा,
1: अब आज भी वो परफ्यूम लगाऊ ना, कोच का परफ्यूम है, और आंखा बंद कर उन्होंने लगा मैं अमेरिका में घूम रहा हूँ, वहां मैंने इसको एक्सपीरियंस कराया था। लेकिन वो चीज मैंने वहां ले जाए, आज भी वही चीज ले जाए वहां। तो कुछ चीजें ऐसी हो आपकी यादें जिंदगी में पहली बार आपने एक्सपीरियंस कर रखी है,
0: तो वो सारी उम्र रहती उम्र तक थोड़े नाल रहती
1: है, छोड़ती नहीं है जी। आपकी पहली तनख्वाह, आपका पहली दफा स्कूल जाना, कॉलेज जाना, आपका पहली दफा बस में अकेले सफर करना,
0: पहली बार फ्लाइट,
1: पहली बार फ्लाइट करना, पहली बार विदेश यात्रा, कोई भी एक्सपीरियंस है ना ये आपका,
0: ये भूल नहीं है।
1: अरे कहाँ भूलना कृष्णा जी, के बात कर रहे हो, पहली दफा कोई देख के हंस पड़े आपको, है आप कहाँ भूल हो गए, समझ तो गए हो गए आप,
0: समझ तो गए ना यार।
1: नहीं गलत, पहली दफा तो बंदा नहीं सोचा है अभी मैं तो लुक फनी ओ वाकई कुछ बात है ना, मत क्यों हंस रहे।
0: एंड एक ये भी होंदा पहली बारी तुसी जदों अपना होंदा ना, आपां अपने दिमाग च बड़े ऑब्सटैकल बनाए होंदे है ना, पहली बारी जदों तुसी कोई पार करो, जिस तरह स्टेज दा बहुत लोगों को मेरी डर होंदा, तुसी पहली बारी कुछ परफॉर्म करो है ना,
1: स्टेज
0: तुसी पहली बारी चार लोगों के बीच जाके गल करो जिन्हां नूं तुसी गल करन लगे अंडर कॉन्फिडेंट फील करदे हो, ये सब चीज़ां तुहानूं हमेशा याद रहिंदियां, ट्रिगर पॉइंट हुंदियां तुहाडी लाइफ दियां है ना।
1: पहली बार जैसे आपसे बात हुई थी, पहली बार सरवाल बने हो भाई किसी की शादी
0: में, जो व्याह सेट ना बैठा हो फिर तो सारा याद रहता, फिर तो रिश्तेदारी में याद आता, यही यार ये नैश सीगा।
1: नहीं नहीं, तकरीबन अपने जितने भी सरवाले बने ना व्याह शादी में, उनका थोड़ी सी उम्र छोटी रखा, जितनी बड़ी उम्र है ना छोटी रखा करा, तो ऐसा कुछ नहीं है। पर लेकिन कोई भी चीज है आपको वो दोबारा आपको रिफ्रेश कर दे, रिमाइंड कर दे, आपको लगता है यार भी हाँ ये बात अलग है, आज की डेट में आप बोलोगे भाई यार ऐसी तो बात नहीं थी, लेकिन उस समय बात थी।
0: हाँ ये तो होंगे,
1: उसमें बात थी, उसमें आपकी तनख्वाह हो सकता 2000 हो, लेकिन 2000 में आप सोचते हो कि मैं तो सारा गांव खरीद लूंगा भाई। आज आप चाहे 2 लाख कमा रहे हो तो वो नहीं चीज कर सकते, लेकिन पहली दफा वाली चीज ना, अरे भाई पूछो मत।
0: सो जी आज आप पहली दफा पहला नशा पहला खुमार, मैं इसलिए गा रहा हूँ कि रणजोत सिंह जी ने कहा है कि तू मेरे सामने ना गाया कर। मौके का फायदा उठाते हुए दोस्तों
1: उनकी यादें ताजा हो जाती है ना,
0: फिर नहीं वो कहते हैं जनरली ना गाया कर भरा, मैं हाँ कहते डोंट सिंग ना, सो पहली बारी गाना गान तो टोकिया जाना, ये भी चीज़ा याद रहती हैं। सो आज का विषय जड़ा ना आप ये उपर ही रिवॉल्व करना गाइस, तो तुम भी साढ़े नाल सांझ पानी है मैसेज थ्रू कॉल्स थ्रू कि कोई इदा दी पहली केड़ी याद है जो अज तक घर करके बैठी पई है, मसलन पहली जॉब जिहड़ी इत्थे आके कीती होवे, पहली जॉब कदी कोई इंडिया कीती होवे उस तो जुड़ी हुई कोई याद, या फिर एनी ट्रिगर पॉइंट, एनी मेजर पॉइंट ऑफ योर लाइफ, पहला किक देना,
1: किक मिली है आपको। लेकिन किक से पहले कृष्णा जी हम अपने श्रोताओं को बता दें, आज हम कुछ पंजाबी के शब्द उनको देते हैं।
0: हाँ जी, ये तो खेड़ दूंगे वर्ड वर्डी खेड़ दूंगे, हाँ
1: तो वो एक बार दे दें ताकि लोग अपने अपने काम पे लग जाए, जिसके बाद में प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में इसको रिवील करेंगे क्या क्या इसका मतलब है
0: जी।
1: तो अब मैं बैक टू पंजाबी में जी।
0: हाँ जी,
1: पहला अपना शब्द है जी आड़
0: आड़,
1: दूजा शब्द है जिरांद
0: जिरांद
1: जिरांद, तीजा शब्द है नपैद
0: नपैद,
1: चौथा शब्द है सनद
0: सनद
1: सनद सनद सस्सा नन्ना दद्दा, पंजवा है जी हल्फन, छेवा आप हुदरा, ते लास्ट है जी मुड कमीद।
0: ये बड़ा प्यारा वर्ड है यार
1: मुड कमीद,
0: मुड कमीद। सो स्वीट,
1: आड़ जिरांद नपैद सनद हल्फन आप हुदरा ते मुड कमीद, ये है जी आपके 7 शब्द, इस पे आप करो कुश्ती घोल मेर करो जो मर्जी करो,
0: सानू तुसी दसो भाई
1: कि इनका लियाओ इसके शब्द अर्थ
0: इनका मतलब क्या है,
1: मतलब क्या है,
0: मतलब क्या है
1: और साथ साथ हम अपनी बातें जारी रखेंगे जी। मैं और कृष्णा 1674 फ्रीक्वेंसी में बैठे बातें कर रहे हैं जी, कृष्णा जी आप बताइए, आपकी पहली जॉब या पहला कोई ऐसा आपको लगा यार भाई ना अरे ये बड़ा मजा आया यार ये चीज में ना, कोई पता क्या होता था जब आप छोटे बचपन में हुए ना, तो कुछ ऐसी चीजें थी जब आपको बोला जाता यार तू छोटा है बड़ा को देखना, हमें होता यार कब बड़े होंगे तो कब करेंगे, जैसे कॉलेज जाना मेरे को था यार कॉलेज जरूर जाना, इसलिए नहीं भी कॉलेज जाना है, इसलिए भी एक कॉपी लेके जानी बस इतना भारी वर्कम बैग उठावा मतलब।
0: हाँ, है ना, स्कूल था बहुत ज्यादा
1: इतना भारी वर्कम बैग हुआ था, इतना अपना बोझ नहीं था जितना बैग का बोझ लेकर चल रहे हम ना। तो स्कूल में जब देखा करते छोकरे दूसरे जमा कराते हमारे बड़े फसल जमा कराते एक कॉपी ले जाकर यार बस एक कॉपी बस वो कॉपी घुमा
0: कर रोल कर जींस दी बैक वाली पॉकेट।
1: अच्छा दूसरी चीज जो थी वहाँ स्कूल में ड्रेस पा के जमा कराते, यहाँ था जो मर्जी कपड़े
0: पहने में फैशन करना है
1: बस एक तैयार बड़े हो जा फटाफट बड़े हो जा किसी तरीके बस हमने कॉलेज जाना है ना। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती है आपके मन में रहती थी जब गए ऐसा तो कोई बात नहीं थी भाई।
0: हाँ ये भाजी एक जनरल भी गल हो जाती ना कि वो समझो एक कमीज है मैनू बहुत पसंद है आज 1500 दी है मेरी जेब च 1000 है जब तक वो समा आ जाना कि मैं अफोर्ड कर सकता वह 3000 मेरे को जेब चा 1500 की खरीद सकता वह कमीज की मेरे ही अखां च कोई वैल्यू नहीं रहनी। ये आप लाइफ च हर चीज़ के उपर यूज कर सकते।
1: हमारी जो नज़र इस बात पर रहा करती भी कितने लड़के नए आ रहे अपनी क्लास में और किसने के पैर रखा है।
0: अच्छा हुंदा है
1: अगली बार मैं ब्याह में जाना भाई अपने बूट दे दिए भाई तेरी शर्ट बहुत अच्छी आ रही है शर्ट लेके जानी ना।
0: अच्छा ए, ए, मैं रंजोल भाई लास्ट टाइम जब आप गल करते यही कर रहे तो मैं सिर्फ ना एज मैन यह चीज़ हो सकती है कि एक दूसरे की चीज़ा सांझियाँ कर लो खासकर स्कूल टाइम्स कॉलेज टाइम च तो खासकर है ना खासकर जिन्होंने होस्टल लाइफ वेखी होवे ते है थोड़े को इस तरह का किस्सा कि बूट किसे दे पा गया जीन किसे दी कमीज किसे दी हुंदा रहा
1: बड़े टाइम बहुत वापस भी नहीं करे कई बार तो
0: हां वो तो फिर वो तो गिवन है
1: वापस भी नहीं करे
0: वो तो गिवन
1: है। बहुत टाइम देखा भी यार बूट बड़े अच्छे पैर रखे बंदे ने बूट पाकर मांग कर लेके बूट कोई दिक्कत वाली बात नहीं
0: हुन शेप आ गई ना पैरों की वधिया तेरे आने नहीं भरा तू रहन दे।
1: हां कईयों में जो नवे ने लेका हुआ ना उनकी पैरों में फंस गए इसके बाद कईयों के पैर ऐसे तो क्योंकि आपका चलने का ढंग कैसा है कुछ तेज चाल चला है कुछ थोड़ी सीधी मी चाल चला है ना तो उस हिसाब से बूट अपनी शेप ले लेता ना उससे पहले वो शेप ले हम उसका बूट ही खेप लेते भाई
0: माड़ा दिखाएंगा ठीक है
1: नहीं ऐसा है वो तो निगाह में रहा था भी यार बंदे का कपड़े लेने कुछ भी करना तो है तो चलता रहा था नॉर्मल चीजें थी तो और आज की डेट में नहीं है आज की डेट में तो पता नहीं क्या घर हर चीज अफोर्डेबल में आ गई तो शायद ले सकता
0: है। एक ये पॉइंट भी है एक ये भी है हल्का जा एलिनेशन जिन्हों आप कह दें है ना कि वो यारी दोस्ती च भी हूँ देखने मिल जाता इतने खासकर जो देखा था वो है कि
1: यू, भाई यू मैं उस समय की बात कर रहा हूँ पेपे की जीन आवा करा दी एक
0: बड़ा
1: हमारा कजन था वो 5000 की एक जीन्स लेकर मैं कहा 5000 में भाई सारे ब्याह के कपड़े आ जा
0: बड़ा बड़ा बड़ा जोर सी ये ब्रांड था स्पाइकर पेपे ईगल करके केड़ा हुंदा है अमेरिकन ईगल हुंदा है पता नहीं
1: समथिंग लाइक
0: हां समथिंग लाइक दैट ना बड़े लोकां नूं होना
1: बात फिर अग्गे निकल जाए। आपकी जॉब बताओ सर आपने कहां पहले काम किया आपको लगा भी यार भी
0: अब इत्थे आके
1: कहीं भी आपको लगा भी अब काम करना शुरू करें पहली जॉब पहली तनख्वाह पहली गुसाखी में आप तो आप शादी होगी।
0: हाँ, नहीं मैं जे आप कामकार बारे गल करा क्योंकि साडा जद्दी काम सेगा बजाजी काम दा ना अनसीते कपड़े फिर हौली हौली रेडीमेड कपड़े समा जिस तरह बदलदा उस
1: तरह मतलब गले पे गला ट्रांसफर होए।
0: हाँ, गले पे गला तो मैं मतलब मेरी सब तो पहली वधिया वाली यादा जो मैं कहां तो वह होंदिया सी कि दुकान पर पहुँचना तो साड़ी दुकान के जो काउंटर भी सके ना वो मतलब मेरे दादा जी ने जिदा के बनवाए से मेरे फादर साहब ने ही वॉज अ वेरी सेंटीमेंटल मैन सो उन्होंने उन्होंने ही जिन्ना मॉडिफाई कर सकते थे समय के ना करते रहे पर कभी वो जो मेन हों ना उदा कभी चेंज नहीं किया। सो मैं जो अल्टीमेटली मैं बैठना शुरू होया कई बार मैंने इस तरह बड़ा ध्यान आना कि ना मैं तीसरी जनरेशन है जो इस काउंटर के गले के उपर है ना बैठता पाया कि 5-7 साल के होना साढ़े नाल एक होंगी सी बेकरी की दुकान तो पता होना कि इन्हें हूँ साइकिल चला के आ जाना घरों पापा तो मैं सर सामने खलो जाना तो उन्होंने पकड़ाने पक्के 20 रुपए जाना बेकरी तो एक आ जानी उतो एपी नवी नवी आई सी 10 की एपी आई नहीं 10 कुरकुरे आ जाने आके रहना शाही ठाड़ बहना तो खाना मेरे ख्याल ना वो पहली जॉब मैं गिन सकता कि गले चो पैसे कितना खर्ची दे किस तरह तुसी अपनी कैपिटल नु खराब कर दोगा इसे सब तो पहली जॉब
1: मैं इमेजिनेशन कर रहा हूं एक फिल्म आई थी ना वो गोलक बुगनी बटुआ वाली ना
0: हां हां हां
1: उसमें वो बोला कर रहा है बंदा जो काम पे रखा हो
0: ओ माहौल बहुत बढ़िया सीगा उस मूवी दा। हां
1: मन लगा शायद आप आपके साथ भी ऐसी बात हुई होगी ना भी बहन जी आप तो 35 के 30 की लगोगे दी मर जाने में 25 दी एक दो एक, एक, एक आप पिछले वीरवार भी बात कर रहे थे ना बुलबुल का बच्चा ये मतलब
0: बुलबुल का बच्चा
1: ये भाई साहब ये तो आपकी घर की चीज है ये
0: नहीं नहीं नहीं असी मैं पता ही करता हूं नहीं हूं तो चलो काम छोड़ता है ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਉੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਸਾਇੰਸ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਉ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਇਨਰਸ਼ੀਆ, ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਆਹ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਟੈਂਸਾਈਲ ਸਟਰੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਸਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਣਾ ਅਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਬਰਿਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਟੈਂਸਾਈਲ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੁਛ ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਤੋਂ ਡਾਲਾ ਹੈ ਇਸਨੇ,
1: ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਾਲੇ, ਵਾਹ
0: ਹਾਂ, ਸੋ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਜਾ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾ,
1: ਆਪ ਜੈਸੇ ਚਲੋ ਯਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਔਰ ਆਦਮੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੇ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਚਾਹੇ ਮਜਬੂਰੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਸੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਰਹੀ ਨਾ ਵੀ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਸ ਮੈਟਰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੀਚ ਹੋ, ਕੁਛ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੋਗੇ ਨਾ, ਤੋ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਨਾ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਮੈਂ, ਤੋ ਮਾਰੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਵੀ ਟੈਂਸ ਸਿੱਖੋ ਬਾਈ, ਫਿਊਚਰ ਪਾਸਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੇ ਟੈਂਸ ਬੜੇ ਸਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੇ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਏਗੇ ਹਿੰਦੀ ਮੈਂ, ਉਸਕੋ ਆਪਕੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੈਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ,
0: ਓਕੇ?
1: ਮੇਰਾ ਕੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈ ਬੇਚਾਰਾ ਮਰਹੂਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਚਾਰਾ, ਉਹ ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਇਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੋਰ ਕੋ ਪਕੜਾ, ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਕੋ ਟੈਂਸ ਇਤਨੇ ਆਵੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਜਮਾਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋੜ ਦਈਏ, ਚਲੋ ਵੀ ਕਿਆ ਪਤਾ ਕੈਸਾ ਲਿਖਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆਇਆ,
0: ਅੱਛਾ,
1: ਤੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਪੇਪਰ ਕੈਸਾ ਰਹਿਣਾ, ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ, ਹਾਂ ਟੈਂਸ ਆਵਾਂਦੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਟੈਂਸ ਆਵਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸਕਾ ਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੋਰ ਕੋ ਪਕੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ POLS ਪੁਲਿਸ NANACH ਚੋਰ ਕੇ ਉਹ ਕੋ ਪਕੜਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਸਕੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਣਾ ਬਣਾ ਦੀ
0: ਜੇ ਬੋਲਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੋਰ ਕੋ ਪਕੜਾ, ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮੈਡਮ,
1: ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦੀ, ਇਸਮੇ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ,
0: ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਤੀ,
1: ਨਾ ਨਾ ਵਧੀਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਕਾ ਐਸਾ ਵਰਡ ਆਪ ਕਹੀਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਦਮੀ ਹੈ।
0: ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਰੋਲ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਤਲਬ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਹੈ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਡਮ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਘਰੇ, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਘਰੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਟੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਿਆਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਕਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਟੀਚ ਇਟ ਐਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਸੋ ਇਹ ਹਊਆ ਹਟਾਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਤਵੀਂ ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹਊਆ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਈਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ, ਰੱਟਾ ਹਟਾਤਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਫੋਰਮੇਟਿਵ ਈਅਰਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਦਾ, ਵੇਅਰ ਇਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ।
1: ਬਾਲੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਿਆ ਤਾ ਨਾ, ਤੋ ਵਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਵਾ ਕਰਾ ਤੇ, ਤੋ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੋ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਯਾਰ ਵੀ ਇਤਨੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਯਹਾਂ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ, ਯੋ ਬੋਲ ਉਨਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਆ ਬੋਲੂੰ, ਗਲਤ ਨਾ ਬੋਲੂੰ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿਮਾਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਯਾਰ, ਅਗਰ ਇਹਨ ਤੇ ਸਭ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਯਾਰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਹੀ ਆਏ ਭਾਈ,
0: ਫੈਕਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਮ ਜਾਣਾ, ਜਿਮ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅਨਫਿਟ ਹਾਂ, ਤੇ ਹਰ ਅਨਫਿਟ ਬੰਦਾ ਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਜਿਮ ਜਾ ਕੇ।
1: ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਮਾਰੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੀ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਆ ਵਰਤੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਰਾ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਔਰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਤੋ ਮੇਰਾ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੇ ਬੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਗਰ ਨੂੰ ਬੋਆ ਕਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੋਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੇ ਵਰਡ ਮੈਂ, ਬੋਆ ਖਾਈ ਟ੍ਰੈਂਚ ਡਰਾਈਵਰ ਸ਼ਾਫਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਰਡ ਲਿਖੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਮੈਂ ਪਾਏ
0: ਦੇ,
1: ਡਰਾਈਵਰ ਸ਼ਾਫਰ ਗਾੜੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾ, ਗਾੜੀ ਪਹਾੜ ਵੇ ਲੈ ਗਿਆ ਵਾ, ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਈ ਤੀ ਟ੍ਰੈਂਚ ਥਾ ਉਸਮੇ ਬੋਆ ਥਾ, ਜਬ ਜੋਬ ਲੱਗੀ, ਜੋਬ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਇੰਡੀਆ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਹਾਂ ਪੇ
0: ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਜੋਬ,
1: ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਜੋਬ, ਅਰੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਜੋਬ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਪੇ, ਕਿਆ ਕਹਿ ਉਸਨੂੰ, ਪੈਰਾਮੈਡਿਕ ਸਕੀਮ ਸਮਥਿੰਗ,
0: ਪੈਰਾਮੈਡ ਸਕੀਮ,
1: ਹਾਂ ਹਾਂ,
0: ਆਪ ਏਕ ਕੇ ਤੀਨ ਜੋੜਤੇ ਥੇ, ਓ ਬੱਲੇ
1: ਬੜੀ ਮਸਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਈ,
0: ਅੱਛਾ ਓ ਬੱਲੇ,
1: ਅਪਰ ਲੈਂਡ ਕਈ ਸੋਤੇ ਰਿਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਬ ਤੋਂ ਥੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਤਾ ਨਾ ਬਈ ਆਪ एक आप बैठे हो आप मेज पे, उसके बाद लगे भी मैं जब जैसे ऑफिस से बाहर निकलूं, बाहर के निकलते बंदे आपके पास हजार आदमी खड़े और बोल रहे हैं वाह जी वाह
0: क्या काम किया है
1: क्या बात। ना ना सपने इतने बहुत बड़े यार, बहुत बड़े सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना देते। क्या भाई सब किस्ता इतनी भी नहीं सोने देती।
0: किस्ता भी नहीं सोने देती।
1: वो सीरीज बड़ी अच्छी है अभी, जिसमें आप जुड़ो, आप दो मेंबर और जुड़ो, दो आगे जुड़ेंगे, तीन आगे जुड़ेंगे ना।
0: अच्छा,
1: तो वह बेसिकली काम जो हमारा बड़ा काम शुरू हुआ था, स्टार्ट हुआ था, और पैसे भी अच्छे खासे होने कमाए थे उसमें।
0: अच्छा, ओके, देयर इज मनी इन दैट।
1: आज देयर इज ए मनी, पैसा उसमें है, आज भी वह काम चल रहा है। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं, बंद हो गया। कई कंपनी उसके साथ की, और भी कंपनी आई थी उसके साथ की, मैं नाम नहीं रिवील करूंगा। फिर कोई बंदे इमोशनल जुड़े हो, कई ने उस तरह के सपने लेके उसमें आए थे लेकिन वह पूरे नहीं हुए।
0: तीन बंदे किदा जोड़ दे, मैनू माड़ा स्क्रिप्ट दसो ना यार,
1: जुड़ लो क्या दिक्कत भाई साहब।
0: हां हां, समझो मैं अपने आराम ना बैठा मैं, है ना गाइस, आप आज ना लाइव करेंगे, टूर साहब बंदे जोड़ दो। हां जी, टिंग टोंग, दरवाजा तो खटखटाओगे ना
1: भाई। कृष्णा भाई, क्या हाल चाल है?
0: ओ वधिया वधिया, टूर भाई किदा, ठीक हो?
1: क्या चल रहा है जिंदगी में?
0: नथिंग यार, कोई काम ही नहीं है।
1: काम नहीं है
0: ना यार?
1: भाई साहब, आपको ऐसा काम बताएंगे आपको ये लगेगा भाई यार मैं तो ये काम कर सकूं, ये तो बड़ी आसान सी चीज है।
0: अच्छा दसो।
1: अगर आपको ये बोलूं, आपको जो डेली मरला की चीज आप ले रहे हो बाजार में से, कोई भी चीज हो, साबुन है, तेल है, चाय पानी है, कपड़े है, कहीं भी ले रहे हो, अगर आप बोलो आपको खरीदने में भी पैसे आएंगे तो आप करोगे कि नहीं करोगे?
0: पाजी बिल्कुल
1: खरीदोगे ना। तो आपको अपने वाला ब्रांड छोड़ना है जी, हमारे वाला ब्रांड पकड़ना है, इसके कपड़े, इसकी चीज खाओ, इसी का पहनो, इसी का बताओ।
0: ओके,
1: बताने में भी पैसे है जी, खरीदने के में भी पैसे है जी।
0: वाह,
1: तो आप क्यों करोगे? अब आती है बात आपके पास बढ़िया चीज की, और आप देखो अपनी गुंजाइश कैसी है।
0: हांजी, हांजी।
1: अब आप मेरे को ये बताओ, मार्केट में गाड़ी मर्सिडीज बहुत बढ़िया है, मारुति कार बहुत बढ़िया है?
0: मर्सिडीज तो बढ़िया है जी,
1: लेकिन इनकम के हिसाब से आप मारुति ले सकते हो।
0: हाँ, ये बात तो सही है जी।
1: ऐसा ही है जी, अपनी टीवी एडवर्टाइजमेंट जब आती है ना जी, ये साबुन बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरे को तो भी 10 वाली चक्की चाहिए।
0: बिल्कुल ठीक बात,
1: मैं 25 वाला नहीं ले सकता।
0: वाह,
1: अगर 10 वाले में ये बोलूं आप 10 की खरीदो, उसमें भी आपको $2 वापस आ जाएंगे।
0: हाँ हाँ,
1: तो आप करोगे कि नहीं करोगे?
0: बिल्कुल।
1: अब ये दो को आप जोड़ते रहो जी, आप चक्की कितनी यूज कर रहे हो महीने में, तो भाई साहब आप